मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह देह संजरिया रहा कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्राप्त कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवर ना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाई गौड़ी ग्वार री मोहल्ला पंजवां कर्म भूम मह बूह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटै जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास।

सास गिरासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इस ते किस नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

पूर्ण पूर रहे हो सब जाय, गुरपूर सब परम चकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बांध लख खरे।

दीपक दीपाहि अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस डोले नाही तुमरा तीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कह हृदय वसे दुख दर्द तेह नानक नसे गौड़ी गुआरी महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना आघाना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्ज्यो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं तेरी बिन हर भजन।

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, चोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, ता मह मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला पर पंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख इहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाइय, कहो नानक वड भागी पाइय। जा कै हर तन सोई सुहेला, प्रभु कृपा ते साध संग मेला। रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवा।

संसार जो हलाहल सो पीवै बौरा अमृत नाम जानै कर कौरा साध संग कै नाही नेर लख चौरासी ब्रह्मता फेर एकै जाल फहाए पंखी रस रस भोग करहै बहुरंगी कहो नानक जिस पये कृपाल गुरपूरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआरी महला पंजवां तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ प्रभ किरपा ते बंधन।

नाम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिए कतु जाइए, साध संगत बड भागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराद, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गवारी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको वनज एको व्यवहारी, अवर न जान है बिन निरंकारी, हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का हुए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रह।

रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन तने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निर धन पेख सोभा, मूल ब्यादि व्यापस लोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म कर हौ फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, विचार व्यवहार व्यापत एह जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ता को कहां व्यापै माय, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ता कै निकट न आवे माई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, नैनो नींद पर दृष्ट बेकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह, रहाओ सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कै बाप ना माई, उन तेरा कै मीत ना पाई, दर्ब सियाणप ना होए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते,

पार ब्रह्म स्यो लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरह मेटिया अन्यहारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जाके कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापे अमृत नाम हृदय हर जापे पार ब्रह्म परमेश्वर त्याय।

पृथपाल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु की।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जां कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्ज

आठ पहर हर हर गुण गाऊं, कहो नानक हों तिस बल जाऊं। राग गौड़ी ग्वारनी महला पंजवां, चौपदे दुपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना। कहो गसाई मिली ऐ के, जो बिबरजत तिस स्यों ने रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ अपूठा बुनना। दोहां सनिया का खसम प्रभ सोई, जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वार वी महला पंजवां, कल युग मह मिले आए संजोग। जिचर आ गया तिचर भोगह भोग, जलै न पाइए राम स्नेही। किरत संजोग सती उठ होई रहाव, देखा देखी मन हठ जल जाइए। प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइए।

ना मोल परे पंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल पाई टूट ना आवे वध दो जाई कहो नानक।

का मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया, जां की प्रीत गोबिंद स्यो लागी, दुख दर्द भ्रमता का भागी रहा, जां को रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपटायो, जा का कहया दरगाह चले, सो किसको नदर ले आवे तले, जां

दुख सुख सम कर जापै, ताको काड़ा कहां बियापै, सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाउ जाकै अचिंत वसै मन आए, ताको चिंता कतहु नाहि, जाकै बिन सिओ मन ते परमा, ताकै कछु नाही डर जमा, जाकै हृदय दियो गुरनामा, कहो नानक ताकै सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवां, अगम रूप का मन महथाना, गुर प्रसाद किनै विरले जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसह प्राप्त तिसले पुंचा रहाउ, अनहत बाणी थान निराला, तां की धुन मोहे गोपाला, तह सहज अखारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता, हरख अनंत सोग नहीं बिया, सो कार्य गुर नानक को दिया, गौड़ी महला पंजवां, कमन रूप तेरा अरादो, कमन जोग काया ले साधो, कमन गुण जो तुझ ले गावो, कमन बोल पार ब्रह्म रिजावो, रहाओ कमन सो पूजा तेरी करो, कमन सो बिद जित पव जल तरो, कमन तप जित तपिया होए, कमन सो नाम हमने मल खोए, गुण पूजा ज्ञान ध्यान, नानक सगल काल, जिस कर कृपा

सेव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहा मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजा।

पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक कर्णहार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा संत की धूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते चोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल परगासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे बड़े भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा।

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जा कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम।

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान। हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम

पाद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरने आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन मह लेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भागे।

करत जन सू है ता कौ माया अग्न ना पू है। मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजियले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजवां छाड़ सियानप बहु चतुराई गुरपुरे की टेक टकाई। दुख बिन से सुख हर गुण गाई गुरपुरा पीतिया लिवलाई। रहाउ हर का नाम दियो गुरमंत्र मिटे वसूरे उतरी चिंत। आनंद भये गुर

आई। गुर पूरे जब कृपा करी, भणत नानक मेरी पूरी परी। गौड़ी महला पंजवां, अनक रसा खाई जैसी ढोर,

साध संग मिल पजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा काल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण गाया।

रात पूरे गुड़ काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस भेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवां साध संग तां की सरनी परो मन तन अपना आगै धरो अमृत नाम पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ ताज अवमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मन सुमाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ता की चरणी लाग गौड़ी महला पंजवा सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक तेजन सुफल फले गौड़ी महला पंजवां।

रहाओ। सिमरत सिमरत प्रभ का नाम, सगल रोग का विनसिया थाऊं। सहज सुपाए बोले हर वाणी, आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओह बेला कहो हौ बल जाऊं, जित मेरा मन जपै हर नाऊ। रहाओ सफल मूरत सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कारस, चरण पनीत चलह हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द राख मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे,

जाना, इन सुख पाया जो प्रभ पाना, अग्न सागर महाव्यापै माया, ते शीतल जिन सतगुर पाया, राख ले प्रभ राख नहारा, कहो नानक क्या जंत विचारा, गौड़ी महला पंजवा, तुमरी कृपा ते जपिए नाउ, तुमरी कृपा ते दरगाह थाउ, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ, तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास, गौड़ी महला पंजवा, तन बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग, परत विहून

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुम ते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समान, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाव, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजे।

सह मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवे काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जा कौ नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देहे होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवा, गुर जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाइए वडभागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी, गौड़ी महला पंजवा, करै दुह कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बिख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल विधाता, गौड़ी महला पंजवा, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, संत संग बैस गुण गाए, तां का रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पये निहाल, कहो नानक गुर पये है दयाल, गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल विकनासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाओ, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को व्यापारी पूरा, जिसह

आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़े महला पंजवां जिसका दिया पैने खाए तिस स्यो आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जानह सवान कहो नानक हम लूण हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवां प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कह हृदय वसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवां खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवां कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पय सहाय मान मोह खोए गुर परम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिखै राज ते अंधला पारी दुख लागै राम नाम चितारी तेरे दास को तू ही वडियाई माया मगन नरक लै जाई रहाओ रोग

चित्त सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लय निवारी ऐसा हर रस रमो

हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम। वड भागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देह ता पाइए रहाउ। हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरह पार। साधु संग करहो सब कोय, सदा कल्याण फिर दुख ना होय। प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगाह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवां, जल थल महियल पूर्ण हर मीत। ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल

जन्म जरा मृत जिसवास, सो सुसमरत सिमर सास ग्रास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय संभाल, घर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मन तन राता राम कै रंग रहाउ। गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया, सोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय मह जाप, नानक पेख जीवै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन इहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाउ। विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर बिसरे दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ना नेरे, सो वड भागी निश्चल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै, साधु संग सिमर गोपाल, बिन नाम झूठा धन माल रहाउ। रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग मह आया सो परवान, घट घट अपना स्वामी जान, कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरणी ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, हर के दास स्यों साकत नहीं संग, ओ बिखई ओ सराम को रंग रहाउ।

बिन जो जन गीते चरण कमल प्रेम भक्ति बीते रहाव आन रसादि सह सब चार नाम बिना निफल संसार अंधकूप ते काढ़े आप गुण गोविंद।

दोष्ट होय, कोट जन्म के किल विख खोय, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान, गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म धर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, तां की पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवानी।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू ना जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दुए कुल साध, राम नाम नानक आराद। गौड़ी महला पंजवां, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याऊ करे करतार। अपने दास को रखनहार रहाउ। आद गाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वड ताप। तिन मारिया जे रखे न कोय, आगे पाचे मंदी सोए। अपने दास राखे कंठ लाए, शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवां, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाउ। साची दरगाह बोले कूड़, सिर हाथ पछोड़ै अंधा मूड़। रोग व्यापे कर दे पाप, अदली होए बैठा प्रभ आप। अपन कमाए आपे बांधे, दर्ब गया सब जी कै साथे। नानक शरण परे दरबार, राखी पैज मेरे करतार। गौड़ी महला पंजवां, जन की धूर मन मीठ खटानी। पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाउ। अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुद मन जाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुद न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया भउ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाउ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवां, जीव

बाणी कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवा थिर कर बैसो हर जन प्यारी सतगुरु तुमरे काज सवारी रहाओ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारी बादशाह सहा सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निरपो होए भजो हो भगवान।

पकरी प्रभ स्वामी गौड़ी महला पंजवा हर संग राते पाहे ना जले हर संग राते माया नहीं चले हर संग राते नहीं डूबे जला हर संग राते सुफल फला सब पै मिटह तुम्हारे नाई पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ हर संग राते मिटै सब चिंता हर स्यों सो रचै जिस साध का मंता हर संग राते जम की नहीं त्रास हर संग राते पूर्ण आस हर संग राते दुख न लागै हर संग राता अन दिन जागै हर संग राता सहज कर वसै हर संग राते ब्रह्म पौ नसै हर संग राते मत उत्तम होए हर संग राते निर्मल सोए कहो नानक तिन कहो बल जाई जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही गौड़ी महला पंजवा उदम करत सीतल मन पहे मार्ग चलत सगल दुख गए नाम जपत मन पहे आनंद रस गाए गुण परमानंद खेम पया कुशल कर आए पेटत साध संग गई बलाए रहाओ नेत्र पनीत पेखत ही दर्श तन मस्तक चरण कमल ही परस गोबंद की टहल सफल एकाया संत प्रसाद परम पद पाया जन की कीनी आप सहाय सुख पाया लग दासह पाए आप गया ताया पह पहे कृपा निदान की सरनी पए जो चाहत सोई जब पाया तब ढूंढन कहां को जाया अस्थिर पए बसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख बासन गौड़ी महला पंजवा कोट मजन कीनो इशनान लाख अरब खरब दीनो दान जा मन बसेओ हर को नाम सगल पवित्र गुण गाए गोपाल पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव बहुत उर्द तप साधन साधे अनक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन अरादे सिमरत शास्त्र वेद बखाने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभ स्यों मन माने अगाध बोध हर अगमे अपारे नाम जपत नाम हृदय बिचारे नानक कहो प्रभ कृपा तारे गौड़ी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुर हृदय बसाया गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ अन दिन जपो गुरु गुर नाम तां ते सिद्ध पए सगल काम दर्शन देख सीतल मन पहे जन्म जन्म के किल बिख गए कहो नानक कहां पै पाई अपने सेवक की आप पैज रखाई गौड़ी महला पंजवा अपने सेवक को आप सहाई नित प्रत पारे बाप जैसे माई प्रभ की शरण उबरै सब कोए कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव अब मन बसया करने हारा पै बिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल बिखलाते कहन न जाए प्रभ की वडियाई नानक दास सदा सरनाई राग गौड़ी चेती महला पंजवा धुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम को बल पूरन पाई तांते बिरता ना व्यापै काई रहाओ जो जो चितवै दास हर माई सो सो करता आप कराई निंदक की प्रभ पत गुआई नानक हर गुण निरपो गाई गौड़ी महला पंजवा भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गह लेहो अंगुरिया रहाओ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पिता महतरिया
चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमक निमक बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कमन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भये केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंद पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

रहाव। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिसह प्रापत सो हर गुण गाए। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

अधारी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरे जनन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिल बे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पाख मिल साधु सरन गहो पूरन राम रतन हियरे संग राख रहाओ प्रम की कुई तृष्णा रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद।

हर पेखन कौ सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिन रैनी, है कोई संत मलावै नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की, अनक पांत तिस करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्स सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाए गुण सागर, जन्म जन्म को जात बोहोरा, आनंद सुख पेटत हर नानक, जन्म किरतार्थ सफल सवेरा, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन बिद मिला गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मुहे मार्ग दे बताई रहाओ, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई, एका संगत इकत ग्रह बस्ते, मिल बात ना करते पाई, एक बस्त बिन पंच दोहेले, वह बस्त अगोचर ठाई, जिसका ग्रहो तिन दिया ताला, कुंजी गुर संपाई, अनक अपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर सरनाई, जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिवलाई, पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई, मेरे राम राय इन बिद मिलै गुसाई, सहज भया भ्रम खिन मह नाठा, मिल ज्योति ज्योत समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतलै, सतगुर मुझे बतायो, रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही।

बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो। नौ निध नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो। एक कनक अनक पांत सा

अल्लाह पंजवा औध कटै दिन सरह नारी मन गुरमिल काज सवारी रहाउ। करूं बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला यहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। एह संसार विकार सहसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सुई विहाजो हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावहु सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहि निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ। पंच बखादी एक गरीबा राख हो राखन हारी खेद करहे और बहुत संताव है आयु शरण तुहारी। कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकी ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया। जीत लए ओए महा बिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपो संग तुम्हारे बस्ते

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पथ प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम है दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछ कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछ गौड़ी महला पंजवा हौ ता कह बलिहारी जा कह केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ता की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्स प्यासा उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ता कै चरण परों ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दीसै सब किस जोग मह काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुने आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखे

मिल पए एकत्रा एकस कै वस किए दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेट माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटे गौड़ी।

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटां प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी।

अनेक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनेक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाऊ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कर कीर्तन हुए उदार। राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख। चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस सोचो चितों।

चेते बंद परे, जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए। जो लो मेरो मेरो कतो तो लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चलियो तो लो दान भरे, पोट डार गुर पूरा मिलिया तो नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा, पावन त्यागियो री त्यागियो, त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो। सर्व सुख आनंद मंगल रास, मान गोबिंद आगियो रहाओ। मान अभमान दो समानी, मस्तक डार गुर पागियो। संपत हरख ना आपत दुखा, रंग ठाकुर लागियो। बास बासरी एक स्वामी, उद्यान दृष्टा गियो। निरपौ भये संत भ्रम डारियो, पूर्ण सर्वागियो। जो किस करतै कारण कीनो, मन बुरो ना लागियो। साध संगत प्रसाद संतन कै, सोयो मन जागियो। जन नानक ओड़ तुहारी परियो, आयो सरनागियो। नाम रंग सहज रस माने, फिर दुख ना लागियो। गौड़ी माला महला पंजवा, पाया लाल रतन मन पाया, तन सीतल मन सीतल थिया, सतगुर शब्द समाया रहाओ। लाथी भूख त्रिशन सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ, मन जीतो जग सारी। तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर, डोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मूके। अचरज एक सुनो रे भाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो, तो बिसरी तात पराई। कहो ना जाई एहो अचंभव, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच भये बिगासा, गुर निधान हृदय लै राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरनी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरनी रहाओ। शास्त्र सिमरत वेद बिचारी, महापुरखन इउं कहिया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सुख ना किन्हू लहिया। तीन भवन की लक्ष्मी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बलास करत मन मोहन, पूरन होत ना कामा, जल तो कबहू ना बूझत, सगल बिरथे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की धूरा। गौड़ी माला महला पंजवा, मोको एह बिद को समझावे, करता होए जनावे रहाओ। अनजानत किस इन्ह कमानो, जप तप कशु ना साधा, दह दिस लै इह मन दौरायो, कमन कर्म कर बांदा। मन तन धन भूम का ठाकुर, हौ इसका इह मेरा, परम मोह कस सूझस नाही, एह पैखर पय पैरा। तब एह कहां कमावन परिया, जब एह कछु ना होता, जब एक निरंजन निरंकार प्रभ, सब किस आपह करता। अपने कर्तव्य आपे जाने, जिन एह रचन रचाया, कहो नानक करन हार है आपे, सतगुर परम चुकाया। गौड़ी माला महला पंजवा, हर बिन अवर क्रिया बिथे, जप तप संयम कर्म कमाणी, एह ओरे मूसे रहाओ। वर्त नेम संयम मह रहता, तिनका आड़ ना पाया, आगे चलन और है पाई, ऊहा काम ना आया। तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता, आगे ठहर ना पावे, ऊहा काम ना आवे। एह बिद ओह लोगन ही पति आवे, चतर वेद मुख बचनी उचरै, आगे महल ना पाईए, बूझै नाही एक सुधाखर,
ओहो सगली झाख चखाई है। नानक कह तो एहो बीचारा, जे कमावै सो पार ग्रामी। गुरसेव हो अर नाम त्याव हो, त्याग हो मन हो गुमानी। गौड़ी माला पंजवा माधो, हर हर हर मुख कही है। हम ते कशु ना हुवै स्वामी, ज्यो राखो हो त्यों रही है। रहाओ क्या किछ करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे। जित तुम लावो हो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लावो हो। नानक की बेनंती हर पह, अपना नाम जपावो।

तेन त्रे पवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी एहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन एहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जीओ पूजा अर्चा बंदन देवा जीओ दासन दास नाम जप लेवा जीओ बिनो ठाकुर पै कही है जीओ इस पुन्नी मेरी मन तन हरिया जीओ दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जीओ हर हर नाम जपे जप तरिया जीओ एहो अजर नानक सुख सही है जीओ गौड़ी माज महला।

मारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातियां सुन कै चुप किया कद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रत्ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाम जम कंकर नेड़ ना आवई।

आज सब फिक्किया तन मन फिक्का होय, बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय। अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे, औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर के

सतगुरु प्रसाद राग गौड़ी महल्ला नौवां साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहन सपागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना उस्तत निंदा दऊ त्यागे खोजे पद निर्वाणा जन नानक एहो खेल कथन है किन्हूं गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवां साधु रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यों सुपना रह नाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यों बादर की शाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहियो राम सरनाई गौड़ी महला नौवां प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एहन समग्न रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एहे विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देख तास उठ धावे भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड़ता ही बिसरावे जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे गौड़ी महला नौवां साधो एहो मन गहियो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई रहाओ कठन क्रोध घट ही के भीतर जेहे शुद्ध सब बिसराई

गाई जन नानक हर भये दयाला तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवां साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो गौड़ी महला नौवां को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमखना हर गुण गावै रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महासंकट बन तास्यो रुच उपजावै अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो ना लावै नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे कट राम सुमावै गौड़ी महला नौवां साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाव लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब

लुटे बवरा अहल सौद कटे नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यू हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औज सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिव

ब्राह्मण हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी तत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यो तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस सेई बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन खाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया।

तिसको वाहु वाहु जी शब्द सुनावे, तिसको वाहु वाहु जी मेल मलावे। वाहु वाहु तिसको जिसका इहो जीयो, गुर शब्दी मत अमृत पीयो। नाम वडाई तुद भाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए। अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए। गौड़ी महला पहला हऊ मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया। हौ हौ करत नहीं सच पाई है, हऊ मैं जाए परम पद पाई है। रहाऊ हऊ मैं कर राजे बहुतावह, हऊ मैं खपह जन्म मर आवह। हऊ मैं निवरै गुर शब्द विचार, चंचल मत त्यागै पंच संघार। अंतर साच सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह। सच करनी गुर परम चकावह, निरपो कै घर ताड़ी लावे। हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो झगड़ चकावे। जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया। आग्या नहीं लीनी परम भलाया, जो उपजै सो काल संघारिया।

मारा रहाओ। गुरमत राम जपै जन पूरा, तित घट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रव राखे कृपा धार। जिनकै हिरदय हर हर सोई, तिनका दर्स परस सुख होई। सर्व जिया मैं एको रवै, मनमुख अहंकारी फिर जूनी भवै। सो बूझै जो सतगुर पाए, हउ मैं मारे गुर शब्दे पाए। अर्ध उर्ध की संद क्यों जानै, गुरमुख संद मिले मन मानै। हम पापी निर्गुण कौ गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए। सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा। एहन सुपालह राख ले आत्म सुख तारा। इत उतराखो दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा। जह देखो तह राव रहे, राख राखन हारा। तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा। किरत पया अध ऊर दी, बिन ज्ञान बिचारा। बिन उपमा जगदीश की, बिन सैना अधियारा। जग बिन सत हम देखिया, लोभे अहंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया, सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को, अपरंपर सोई। बिन शब्द

वरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै सहजे पत पाईऐ अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाईऐ नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावै नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावै गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरी क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता, चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस, इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया, राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ, मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पी

माहे। सूतक भोजन जेता किस खाहे, सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै ना जन्मै काल ना खाए, सास्त सिमरत सोध देखो कोय, विण नामै को मुक्त ना होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द बीचार, कल मह गुरमुख उतरस पार, साचा मरै ना आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाय, गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हिरदय उर धारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा, पंडित हर पड़ तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा, रहाउ गुरमुख विचो होमै जाए, गुरमुख मैल ना लागै आए, गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई, गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई, जो किछ कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै थौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियो लाए बह नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावै न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हऊ मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपट।

अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिसते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजै पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे हौ मैं दूजा शब्द जलावे ना मेरा ते हर गुण गावे माया दासी भगतां की कार कमावे चरनी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सहज समावे हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही सहजे गुण रवह साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया गौड़ी महला तीजा।

रहाउ। गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे। मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मलाए। मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावह सहज सुपाए। बिन गुर साचे परम पलाए, मनमुख अंधे सदा भिख खाए। जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई। हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई। सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता, मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता। इन विद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए। हिरदय नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए। सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई। नानक राम नाम वडियाई, गौड़ी महला तीजा। त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए, बंधन ना टूटे मुक्त ना पाए। मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए। सहज तुन उपजे हर

बताए साच न छपे जे को रखै छुपाए ज्ञानी बूझ सहज सुपाए गुरमुख साच रहिया लिभ लाए हम मैं माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुर दाता शब्द सुनाए धावत राख ठाक रहाए पूरे गुर ते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनु कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावे है सच गुण तास दासन दास नित होवे दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई जां हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई।

प्रभ सोए नाम रतन सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी हऊ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रवे।

आए मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिव लाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर

ही जपना, सहजे पूजन सहजे पाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ, सहजे हुआ साधु संग, सहज मिलो पार ब्रह्मन संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जा कै सहज

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबहु ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बेताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिस पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ता का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुखदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाव जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको पये कृपाल कृपा निद तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापै।

दास नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की वाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

कामना जो है दूत, जाकै काम तेरा वड गमर, जाकै काम हो वह तू अमर, जाके चाकर को नहीं दान, जाके चाकर को नहीं बान, जाके

कह पांत, जाकी दृष्ट हुए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीव है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कूकर काम, साकत बेसुआ पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ट फराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे नाव, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाव रहाव, गुर कै बचन सुन रसन वखाणी, गुर किरपा ते अमृत मेरी बाणी, गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग, गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निधर, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, किसकी कटिया जम की पासा, गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवा।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन

करी नमस्कार। काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावै कोट कर्म करतो नरक जावै हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख।

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे।

पंथ डराओ बहुत पैहारिया, मैं तकी ओट संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो दिस जपिए नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ पुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्ब निदान अकथ कथारिया, हर दरगाह सोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोर अपारिया, गुर सेवा भोजन करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हूं मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किने गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहों ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के फूगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता, सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझह सुमानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन मह हुए गुमानी, ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मरत्यां नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हूं कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा कर।

हर मिठ रस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिलै मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंद न मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलियां बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलियां सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमति सहु जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द सनेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहस्य मुंद मन अमाहो साजन रहस्य दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करे बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरेगी नाह बिना प्रभ वे परवाहे धन नाह बाजो रह ना साकै बिखम रैण कनेरिया नह नींद आवै प्रेम पावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा तन मिलै मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे तां पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर रावी बिगसे अमृत बाणी नानक सा तन तां फिर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़े आरे क्यों खूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोए ना पावै हठ निग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द सुन्यापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अन दिनो तिस बाज वखर कोए ना सूजै नाम ले वो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा।

हर के गुण सारे हिन पल रहे न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न साकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कह सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रहन सुहेलड़िए जियो हर स्यों चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी तां कंत प्यारी नामे तरी प्यारू नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गल हारू तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोहे खुआई कूड़ बगुती तां फिर मुक्ति सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए नानक कामण सदा रंग राती हर जियो आप मलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवन मलाए बिन गुर प्रीतम आपने जियो कौन भरम चुकाए गुर भरम चुकाए इउं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे नानक कामण हर वर पाया गुर कै भाए प्यारे गौड़ी महला तीजा पेर बिन

कापड़ तन ना सुहाई। कापड़ तन सुहावै जां फिर भावै, गुरमती चित लाइयै सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइयै। गुर शब्दै मेला तां फिर रावी, लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी, जां हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, एहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती, साचै नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है, दुबदा मार निवारे, नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू, नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैणी नींद ना आवै जियो, भावै अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावै, मरिए हावै, बिन फिर क्यों सुख पाईए। गुर आगै करो बिनंती, जे गुर पावै ज्यों मिलै तिवें मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरै ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सहज सुपाई, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज समाए। दुबदा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे, रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिया प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम अत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हमे मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी, किस आगै जाहि पुकारे। नानक मनमुख थाउ ना पाए, बिन गुर अत प्यारे। मुंद एआणी भोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा। आपे मेल मिलिया जियो, आपे बख्शन हारा। अवगुण बख्शन हारा, कामन कंत प्यारा। कट कट रहे आसमाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है। सतगुर बूझ बुझाई, सदा आनंद रह दिन राती, अन दिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए। राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए। शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंघाए। इन बिद दुत्तर तरिए, गुरु

आया सो सब को जाती उभरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम बखाने आप तरह कुल तारे नानक नाम बसे घट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वापारा राम नाम वापारा अगम अपारा गुरमति धन पाइए सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाइए हम मतहीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुणदाता अब गुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए गौड़ी महला तीजा।

हर जीव गुर पुरख बधाते, पुरखो बधाता एक श्री धर, क्यों मिलह तुझै उड़ीनिया, कर करह सेवा आसीस चरणी, मन आस दर्श निमानिया, सास सास ना घड़ी विसरे, पल मूरत दिन राते, नानक सारिंग ज्यों प्यासे, क्यों मिली है प्रभदाते, एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे, मेरा मन तन मोहे लिया जियो, देख चलत तुम्हारे, चलता तुम्हारे देख मोही, उदास तन क्यों धीरे, गुणवंत नाहा दयाल बाला, सर्व गुण भरपूरे, फिर दोष नाही सुख है दाते, हों विछ

कर आव हो नाह प्यारी हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलिया करे कामण मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरखे उपजिया दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है कर्म है फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला धर्मशाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे जह साध संत इकत्तर होवे तहां तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मन है एक जी अवर सब राली मन है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया तुद बचन गुर कै वस किया आदि पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपै निधाना जम काल किनको लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहिया अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी गौड़ी महला पंजवां सलोक पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु दुख हरन दीन सरन श्री तहर चरण कमल अराधी है जम पंत बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधी है कल मलै दहता शुद्ध करता दिन सरैन आराधु बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया भगत वच्छल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर
सर्व कला जिन तारी, करुणा मैं समरथ स्वामी, टट कट प्राण आधारी, प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू, चरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू, रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी, बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी, गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला, बिसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारे सब किस है, काल कंटक लोभ मोह नास है, जी जा कै प्रभ बस है, सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला, बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला, गौड़ी महला पंजवां, सुन सखिए मिल उदम करेहा, मनाए लह हर कंत, मान त्याग कर भगत ठगौरी, मोह है साधु मंत, सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई, एह रीत भली भगवंत, नानक जरा मरन पै नरक निवारे, पनीत करे तिस जंत, सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइए, सहज सुपाए अपाद रहत होए, गीत गोविंद गाइए, कल कलेश मिटह ब्रह्म नासह, मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम त्याइए, सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्स बैरागण, पेखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग, समरथ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता, सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सुहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल, कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक, आप है किया कराया, आप है करने जोग, नानक एको रब रहया, दूसर हुआ ना होग पौड़ी, ओं साध सतगुर नमस्कार, आद मद अंत निरंकार, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह अस्थूला।

एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओअंगुर मुख कियो अकारा एक है सूत परो मनहारा पिन पिन त्रै गुण विस्थार निर्गुण ते सरगुण दृष्टार सगल पांत कर करह अपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू पांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सोच पाई है तेह संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय भरम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक तां कै सद बलिहारा सलोक धन तन कहां पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ सुरगना आच है अच प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहां व्यापहता हूं जो एक शाद अन कतै ना जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग ना हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एकै को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देव नहार मन है बिसराना तारु कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक तां कै निकट ना माए सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपे पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वाका अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिख शोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म रत

वरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे न बुझह सो प्रभ सदहु संग लेख गणत न छूटी है काची भीत न सुध जिसे बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कह नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंग हो क्या मन अपना हर हर नाम जप हो जप रसना रे रे दरगाह कह ना को आओ बैठ आदर शुभ देव वाह महली पावह तू बासा जन्म मरण नह हुए बनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ विकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखै रस राते अहम बुद्ध माया मद माते या माया मैं जन्मै मरना ज्यो ज्यो हुक्म त्यों त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभ तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना सलोक लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गहर गंभीर अथाह दूसर नाही अवर को नानक बेपरवाह पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एक है आप अवर न हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीट हस्त मह पूर समाने प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बस है साधु कै संगे अन दिन नाम त्यावह रंगे आवत सोजन न महराता जाको दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम।

आद जगादी हुण होवत नानके कै सोए पौड़ी कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाहे नह हुआ नह होवना जत कत ओही समाहे कुलह तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया सलोक नान काले सब दिवस सास नह बदन कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोह नानक तेहु गुवार पौड़ी गंगा अंगरासै काल तेह जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जिहे आप दुआए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जेह जीवत जपया प्रगट भये नानक नह छपया सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत प्रगट भये आपै गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा सलोक छाती सीतल मन सुखी शंतग बिंद गुण गाय ऐसी कृपा करहु प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी छछा शोहरे दास तुम्हारी दास दासन के पानी हारी छछा शार होत तेरे संता अपनी कृपा करहु भगवंता छाड़ सियानप बहु चतराई संतन की मन टेक टकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई सलोक जोर जुल्म फूलह कनो काची दे विकार अम्बुद बंधन परे नानक नाम छुटार पौड़ी जज्जा जानै हौ कछ हुआ बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ जो जानै हौ भगत ज्ञानी आगै ठाकुर तिल नहीं मानी जो जानै मैं कथनी करता व्यापारी बसधा ज्यों फिरता साध संग जे हों मैं मारी नानक तां को मिले मरारी सलोक चालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध कारह तुझै ना व्यापई नानक मिटै उपाद पौड़ी चज्जा चूरन मिटै तुमारू राम नाम स्यो कर व्यवहारू चूरत चूरत साकत मुआ जां कह हृदय होत पाओ बिया चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ चरह काम क्रोध दृष्टाई नानक जाको कृपा गुसाई सलोक यतन करो तुम अनक बिद रहन न पावो मीत जीवत रहो हर हर भजो हो नानक नाम प्रीत पवड़ी जन्या जानो दृढ़ सही बिन सजात एत गणती गणो ना गण सको ऊठ सधारे केत न्यो पेखो सो बिन सतो कास्यो करिए संग ज्ञान होया बिद सही चित झूठो माया रंग ज्ञान सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते तेह कढ़ो जेह हो वो सो परसन ज्ञान कै हाथ समरथ ते कारण करने जोग नानक ते उस्तत करो न्याहू कियो संजोग सलोक टूटे बंधन जन्म मरन साध सेव सुख पाए नानक मनो ना बिसरे गुण निध गोविंद राय पौड़ी टहल करहो तौ एक की जाते बिरथा ना कोय मन फन मुख ही है बसे जो चाहो सो होए टहल मैल तां को मिले जां को साध कृपाल साधु संगत तो बसे
जो आपन होहे दयाल, तोहे ताहे बहु पवन बिन ना

भरे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा, दोष नहीं काहू को मीता, माया मोह बंद प्रभ कीता, दर्द निवार है जाके आपे, नानक तेते

तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सोभा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई।

मत पूरी प्रधान ते गुरपूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साज संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं ते माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर छूटन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जैया यतन करत बहु बिदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाथा मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटे तेरी बाकी रण दर्ग है तो सीजै पाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाऊ नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है भाई।

वासुदेव सर्वतर में ऊन ना कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वासुदेव जल थल में रविया गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगल ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया साकत मुग्ध अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन नानक किरत कमान पौड़ी, अड़ाड़ा अड़ाड़ मिटै संग साधु कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही वा की डाड़ मिटत बिन साही, अड़ाड़ करत साकत गावारा जेहे ही है हम बुद बेकारा, राड़ा गुरमुख अड़ाड़ मटाई निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेहे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारे तुम समरत अगणत अपारे, शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पये मन तन पये अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तक करने जोग पौड़ी, खखा खरा सराहू ताहू जो खिन मैं ऊने सुबर पराहू, खरा निमा ना होत परानी अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी, भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता, असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहेब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परहो हर राय, उकत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी, सस्सा सियानप छाड़ इयाना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना, सहस भांत करह चतुराई।

के आखिर किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे ताकि एक दर्श तुहारू नानक उन संग मोहे उधारू।

जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम।

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदासत पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी हों मैं मैल ना जावे हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गमान ना मन ते हुटै सोच करै दिनस

है अपमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, एक है सगल सृष्ट सा।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत बूझै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मह सुख कनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूतर धारी।

आर लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटम।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धावह मिथ्या

जाय। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अपदेश।

रहत, सब कछ जान आत्म की रहत, जिस पावै तिस लए लड़ लाई, थान थनंतर रहे आसमाई, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी, सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव, अष्टपदी, जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिस को सिमरत परम गत पाव है, जेह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसै त्याहे सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहु तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहिए त्यावन जोग, जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावै है, तिसै त्याग कत अवर लुभावै है।

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब भूत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुल्लै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु धावै साध संग अस्थित मन पावै।

साधक्या संग नाही हो ताप, साधक्या संग तजै सबे आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक्या संग न कबहू तावे, साधक्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साधक्या संग बसै थानी उच्चै, साधु कै संग महल पहुंचै, साधक्या संग दृढ़ सब धर्म, साधक्या संग केवल पार ब्रह्म, साधक्या संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साधक्या संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मी

साध कै संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब स्थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध कै संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाउ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट दीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जान है जेता सुनह तेता बखियान है साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखै एकस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जा

तिहत्तर सत्तर समान, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाही अब महान, ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊचा, मन अपने है सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी।

निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रिया रूप ना पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत।

रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म

पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै जिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मैं सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन

ना पाईऐ धर्म नानक किस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म नाम तिस नगरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तू दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

लोक उस्थित करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु वेद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म

कई कोट भय अभमहनी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूते दूर, नानक आप लिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन।

के दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास

होए नानक तिस बलिहार ने जल थल महियल सोए अष्टपदी करन करामन करने जोग जोत पावे सोई होग हिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार अतार रहावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार।

आवे इसके हाथ हुए ता सब किस ले जो तिस पावे सोई करे अनजानत बिख्या मह रचे जे जानत अपने आप बचे परमे फूला दह दिस धावे।

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इस काबल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्मा।

बड़ राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यो प्रभु राख तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बखियान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

त्रिण समान कस संग ना जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत हिन मह हुए जाए पसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे।

अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगहा कहो कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे, तिसह भला।

कोई, तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई, तब लग

लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करामन करन हार इसके हाथ कहां विचार जैसे

न जाए। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करनै हार, उसते भिन्न कहो किश होए, थान तनंतर एकै सोए, अपने चलते आप करनै हार, कौतक करै रंग अपार, मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी।

अष्टपदी संत कै दुखने आर जा घटे, संत कै दुखन जमते नहीं छुटे, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाय, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखे ना कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत किरपाल किरपा जे करै, नानक संत संग निंदक पी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै।

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किस जन्म नह किस मरे अपन चलते आप ही करे आमन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी।

तह बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम। नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किछ करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज।

ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ

नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम थम्मण त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मण ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तो तिसै चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिर है अजान, कौन बस्त आई तिरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, ताज अभमान ले हो।

पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहु अनराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई।

ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान,

मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जां कै हृदय प्रवेश सत नित बूझै जे कोय नाम जपत ता की गत होय आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवर ना बूझ करत बीचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझया तिसे आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी।

दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राख है, पसम करे लश्कर कोट लाख है, जिसका शासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत,

बारंबार बार प्रभ जपिया ई अमृत इह मन तन तृपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्ट।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै

बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबद भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुण पास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा धारी, साध संग जप नाम मरारी। हित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार, एक सिमर नाम आधार। अवर अपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। यह तन संचो हो वो भगवंत।

जाहि। जिस धन को चार कुंट उठ धावह, तो धन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाय, रोग मिटै हर अवखद लाय। सर्व निदान मह

0: हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास। तित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी।
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव। यो रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण अधार। अनक अपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करहु मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए।

मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक विस्थार एक ते भये एक अराध परासत गए।

परया तौ सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजै चाहो साध कै संग परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै

बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करहु इहु काम, आन त्याग जपहु हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपहु अवरहा नाम जपावहु, भगत भाई तरिय संसार बिन

फिर जाप अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कवन नडार कवन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

दृष्ट दर्शन पेहत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पहे अमरा

कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए।

किनै कछ करा, आप भला कर तूत अतनी की, आपे जानै अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकी गत मित कही ना जाए,

तिस सदा सुख हुए, आप बलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार।

हस्तपदी पूरे गुर का सुन अपदीस पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दा मोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाई साध सरन नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत जिस जन आवै

आप तजहु गोबिंद भजहु पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तो टाहिरे हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवे साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजहु साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई।

नानक संत निर्मल पए जिन मन वसया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फाल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रम तो घणो सदा संगारे नीच हरख सोग सहसा संसार हौं हौं करत बिहाय जिन किए तिसह ना जाननी चित में

मोह परम बूढ़त घनो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहु नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी। चतुरथ चारे वेद सुन सोध्यो तत बीचार सर्ब खीम कल्याण निध राम नाम जप सार नरक निवारै।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग घणो सब मिथया बलबंच नह जापै नह बूझिए

बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरयो मन ना विचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसयो।

ताहिर साध संग लिवलाई खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याई सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुभाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिवलाय पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोबिंद भजो हो शरण पर हो हर राय दुख हरे पवजल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

तार्य नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बस

अंत मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत कहल कमाइय नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाइय।

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

बिन से सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की भगत करो ताजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्तासे कीर्तन प्रव रंग कोमल बाणी सब कौ संतोख है पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय नानक।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन ना मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख ना गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु।

नाम पौड़ी 14 चार कुंट प्रभयाप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रवेक तरन आकाश सब मह प्रभ पीक जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तह बसह दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिछान सलोक आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी चिंद पौड़ी अमावस आत्म सुखी पई।

हों मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम तरन गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब स्यों गुण गो

सच्चे सच लाया। श्लोक महला चौथा, मन अंतर हो मैं रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन रत्ता रंग सियो, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है, किस नाल तू बड़ी है, तुद जे वड होए सो आखी है, तुद जेहा तू है पढ़ी है, तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख परगड़ी है, तू सच्चा सब सुदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है, तू करह सो सच्चे होए सी, ता कायत करी है।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहें सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म इक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावे तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवे गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुज सच समाणी। सलोक महला चौथा, हर सत निरंजन अमर है निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन

जिन को वारिया जिन जपया सिरजन हार महला चौथा आपे धरती साजियन आपे आकाश विच आपे जंत उपायन।

पौड़ी। सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लय जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईंदा। सच सच्चा सतगुर इक्के, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंचे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाईंदे। तिने अंदर कूड़ फिट फिट मुंह फिके।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सच्यार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर काया।

से फिटे गुर अंगद कीते कूड़े आरे गुर तीजी पीढ़ी वेचारिया क्या हाथ एना वेचारे गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सवारे जो इच्छा सो फल पाए सी पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे सब निदान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर तारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत ललारे जन नानक मांगै धूड़ तिन जो गुरसिख मित प्यारे महला चौथा जिनको आप दे बड़ियाई जगत भी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिया ता जे किश आप दू कीचै सब करता अपनी कला वधाए देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने भगतां की रख करे हर स्वामी निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए सतगुरु की वड्याई नित चढ़े सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए गुरसिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए।

हर तिनका दर्शन ना करहो, जो दूजे पाए चित लाही, तुल करते आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सका।

करे हर वस्त संभाले नाम निदान हर बन जीए हीरे परवाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ भरम पवाई है ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मह होया नरक घोर दुख खूह है उथे पकड़ ओहो ढोया कूक पकार को ना सुने ओहो औखा होए होए रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओहो तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया हर वेखै सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया जैसा बीजे सो लुणे जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यो लोहा काठ संगोया जन नानक नाम त्याए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वडभागिया सुहागनी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया इको ओत पोत एक देखिया एक मन्निया इको सुनिया।

हृदय है। जिन हर बसिया मन माहे, हर दरगह ते मुख उजले, तिनको सब देखण जाहे। जिन निरपव नाम त्याया, तिनको भव कोई नाहे। हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको धुर लिखिया आहे। ते हर दरगह पैनाई है, जिन हर बुठा मन माहे। वे आप तरे सब कटंब सियो, तिन पिछे सब जगत छडाहे। जन नानक को हर मेल जन, तिन वेख वेख हम जिवाहे। महला चौथा, सा धरती पई हरियावली, जिथे

के सिख मेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

क्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली सच सच्चा जिन्नी अरादिया से जाए रले सच नाले सच सच्चा जिन्नी ना सेवया से

अवस्था सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुंह जम मारिया तिस अग्गै पिछै ढोई नाही।

जन भगत है सच सच्चा जिनी आराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच लादिया सच साहेब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड्डा है सच सेवन से सच रलादिया सच सच्चे नू साभास है सच सच्चा सेव फलादिया सलोक महला चौथा मनमुख प्राणी मुगद है नामहीन परमाय बिन गुर मनुआ ना टिकै फिर जूनी पाय हर प्रभ आप दयाल होहे ता सतगुर मिले।

पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा माया धारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किस जानदा जो जिया अंदर वरतै। तू करता आप अगणत है सब जग विच गणतै। सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बणतै। तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलतै। सतगुरु नु मिले सो हर मिले नाही किसे परतै। श्लोक महला चौथा एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है। गुरमुख लाइए चित क्यों सास ग्रास वसारी है। बहंदिया उठदिया नित मरण जीवन की चिंता गई। एहो जियड़ा हर प्रभ वस ज्यों भावै त्यों रख तू। जन नानक नाम बखश। महला तीजा मनमुख अहंकारी महल ना जाने। खिन आगे खिन पीछे सदा बलाइए महल ना आवे। क्यों कर दरगाह सीजै।

सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसमल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाऊ। हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाऊ। ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए। सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय। सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुरु भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

को अपनी आपे पछताणी अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवां। सेवक सच्चे शाह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवां। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा त्याए। पौड़ी पंजवां। नारायण लया न ठूंगड़ा पैर किथे रखै करदा पाप अमित्या नित विसो चखै निंदा करदा पच मोआ विच देही पखै। सच्चै साहिब मारिया कौन किसनो रखै नानक तिस शरणागति जो पुरख अलखै। श्लोक महला पंजवां। नरक घोर बहु दुख घणे किरत घणा का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम। महला पंजवां। अवखद सबे कीतेन निंदक का दारू नाहे आप भलाए नानका पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवां। तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखुट सब अंदेसे मिट गए जम का भौ छुट काम क्रोध बुरियाइयां।

संग जुट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिख्या लए नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सभा सुन लगे।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे सुध। गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर गावणी।

घर आवो पाऊ पखाला तिसके मन तन नित भाव नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लाव ग्रह तन सब पवित्र हुए हर के गुण गावो हर नाम व्यापारी नानका वडभागी पा।

स्थान तनंतर रव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौ जल पार पौ। महला पंजवा वाउ संदे कपड़े पहर है गर्भ गवार नानक नाल न ना चलनी जल बल होए शार पौड़ी से ही उबरे जगह विच जो सच्चा रखे मोहे डिठे तिन कै जीविए हर अमृत चखे काम क्रोध लोभ मोह संग साधा पखे कर कृपा प्रभ अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी को सके ना लखे। श्लोक महला पंजवा नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म हित पलेरी रुत। महला पंजवा नानक मित्राई तिस सिउ सब किस जिस कै हाथ कमित्रा से कांडी है एक विख ना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पीवो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा डिठड़ो हब ठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुआओ जिन्ना सतगुरु भेटिया। महला पंजवा दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वाथ सुहावी साए नानक नाओ जपंदो तिस धनी पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब किन कीम ना जानी जो जन भेटै साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी तोसा दित्यै सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरै भुख।

दे मर गए मर पे ना सकै मूल। वे मुख होए राम ते ज्यों तस्कर उपर सूल। पौड़ी सुख निदान प्रभ एक है अबनासी सुनिया। जल थल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया। ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया। मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया। तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

हथे पैर भौंदा फिरे खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रहे जा चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदा नाव पल्लै ऐसे रहो सहेलिया अगे नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गड थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै श्लोक महला पंजवां जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया महला पंजवां सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख यूजन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस किसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यों चल है चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने सलोक महला पंजवां सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नास नानक नाम अरादै कारज आवै रास महला पंजवां जित सिमरत संकट छुटै आनंद मंगल बिचराम नानक जपियै सदा हर निमक न बिसरो नाम पौड़ी तिनकी शोभा क्या गणी

गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समधा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा सलोक महला पंजवा कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे है सुख कनेहा हुए महला पंजवा बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी है भव सागर संसार बिख सो पार उतरी है हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी है नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है तलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित डाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अग

किल विख सब बनाश होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दस्या जपिय गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया हर

वाक्य एक जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवां पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सफाए अन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवां जीवन पद निर्वाण।

ज्ञान रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

यह दिशा जल पर्वत बन राए जिथे डिठा मृत को तिल बेठी आए पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम त्यावो।

श्री हस्त पविता अठ साठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उधरे भिख्या गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

तन फुटन जिन्ना साहि विसरै महला पंजवा प्रेतोह की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया रहाउ, मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

आज तब जानोगे जब उगरै गोपाज। कहो कबीर पात हर परवान सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाईए जोग। बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम। जब नहीं कीन से आत्म राम रहाओ। मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई। मुक्ति भेद न गईया काई। गेंद राख जो तरिये पाई। खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई। राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी

चतराई ना चतर भुज पाई रहाउ पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की कर ही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहा जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद।

कबीर जी, अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है, जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग हुए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समा

तौ की जय जो आपन जी जय। मैं ना मरू मरबो संसारा, अब मोहे मिलो है जे आवनहारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मरह संत सब जीव है।

गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप का हीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर।

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाउ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सह

बैठे घर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाते जिन राम ना जा।

कंडा गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत पुकार।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बेख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय बिचार। प्रीत बिना कैसे बदे स्नेह, जब लग रात तब लग नहीं नेह। रहाओ साहन सत करे जी अपने, चोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन तन

नहाऊं। इनके सद बलिहार है जाऊं। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन पावे रहाउ। जेहे कट राम रहया भरपूर, इनकी पग पंकज हम तूर। जात जलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रमे कबीर। गौड़ी कबीर जी गगन रसाल, चोए मेरी पाठी। संच महारस तन भया काठी, वाको कहिए सहज मतवारा। पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाउ। सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया। गौड़ी कबीर जी मन का सुभाव मनह व्यापी, मनह मार कमन सिद्ध थापी। कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई। कहो

तुझह ले तारू हिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी गुआर रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारी, एक नाम कल्प तार तारी।

ठपी रेजी न लाज लाज तोहे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोई सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना होई कौन को पूत पिता को काको कौन मरे को दे संतापो हर ठग जग कोठ गौरी लाई हर के बियोग कैसे जियो मेरी माई रहाओ कौन को पुरख कौन की नारी या तत लेहो शरीर बिचारी कह कबीर ठग स्यो मन मानिया गई ठगौरी ठग पहचानिया अब मोको भय राजा राम सहाई जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ साधु संगत दियो रलाय पंच दूत ते लियो छडाय अमृत नाम जपो जप रसना मोल दास कर लीनो अपना सतगुर।

विद्या अंगियार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

असूतक सूतक ओपत होई गन में सूतक मुए फुन सूतक सूतक परज बेगोई कहो रे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जप हो मेरे मीता रहाओ नैन हो सूतक बैन हो सूतक सूतक श्रवनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई फासन की बिद सब को जाने छूटन की एक कोई कह कबीर राम हृदय विचारे सूतक तिन ना होई गौड़ी।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाउ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाऊं आप छुटकावन ते बांधे बहु

किस नाही, पांच तात तह नाही, एड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगन कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़नहारू सदा अतीता एह कहिए किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए बिनासी का को ठाकुर का।

रहाउ। खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागे त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए हैं पूरे, माया डोल न लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी, पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस,

सह नतर रही उरझाई, छोड़ पसार इहां रहो बपुरी, कहो कबीर समझाई गौड़ी। एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए, जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए। सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ, साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

संतन संगानी काष्ट लोहो उधारियो रे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी

विखै बाच हर्राच समझ मन बहुरारी निरपै हुए ना हर भजे मन बहुरारी गहयो ना राम जहाज रहाउ मरकट मुष्टि अनाज की मन बहुरारी लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा।

सागर तरन कहो मैं सतगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कछ आहे ना मोरा तन धन सब रस गोबिंद तोरा रहाओ इस माटी मह पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जां तिस भावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लंघावे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सारग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन मह उर्द तप करता तव जठर अगन मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठोर ना ठायो कहो कबीर भज सारग पानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बन।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत ना जानिए भाव भगत भगवान। संपै देख ना हरखी है विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विध निरति आसो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरक बसेरो पंख को तैसो इहो संसार। राम रस पिया रे जेह रस बिसर गए रास और रहाओ।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उस

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण हरस नाराम रवि जय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा।

साधु परम प्रगट हुए नाचो हो, या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डरपे, सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संदौरा रहाओ काम।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत।

पधार, जानक वीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपहु, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये है, एक देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुस्से घर जाई रहाओ, पंच पहरुआ दर मह रहते। तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत हुए रहो। तव लै परगास उजारा, नौ कर देख जो कामन भूली। बस्त अनूप ना

जास गुण गाव है तास बस है मूरी प्राणा न रहाउ हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना विखै रोग पै बंधन भागी मन निज कर सुख जा नाना एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अभमान हाना जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना राग

अक्षर खिर जाहिंगे, वे अक्षर इन मह नाही। जहां बोल तह अक्षर आवा, जह अबोल तह मन ना रहावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओह है तस लखै ना कोई। लह लहू तो क्या कहूं, कहूं ता कोपकार। बटक बीज में रब रहे हो, जाको तीन लोक विस्थार। लह लहंता भेद शै, कश कश पायो भेद। उल्ट भेद मन बेदेओ, पायो अपंग अशेद। तुरक तरीकत जा।

अद मैं जाना लिख अर मिटै ताहि न माना ओंकार लखै जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जे तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खक्का एह खोड़ मन आवा खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा खसमह जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

ना जाई। अगह गह गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह ना होई। ता घट माही घाट जो पावा, सो घट छाड़ अब घट घट तावा। नन्ना निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह नाही देखना भाजी है। परम सियानप एह, चचा रचत चित्र है भारी।

यह है शत्रपत पासा शक के ना रहो छाड़ के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे छाड़ कत आप बंधावा जज्जा जो तन

न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढै कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़ो सो गड़ मह पावा।

पावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान भरोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद भूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पया ते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलया ना कोई।

दुर्मत हन कर बस काया गांव रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं भावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहां प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन समहार बिसन

एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोय। सत्सा सो नीका कर सो दोहो घट परचा की बात नरोडोहो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पौन राओ। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो पवजल तर

वारे अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एहे त्री ओह कंत कहावा हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई न्यो न्यो कर।

अपार काल कल्पना कदे ना खाई आद पुरख मह रह समाय द्वितीया दोह कर जाने अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओह बढ़े ना घटता जाए अकुल निरंजन एक पाय तृतीया तीने सम कर लियावे आनंद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर भीतर सदा परगास चौथे है चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

छठ खट चक्कर शहूं दिस धाय, बिन परचै नहीं थिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचर्ज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगंबखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान कतनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज परगास। आद अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में।

सत बार बार हर के गुण गाव गुरगम भेद सोहर का पाव रहाव आदत करे भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनिस अखंड सुर ही जाय तो अनहद बीन सहज महबाय सोमवार सस अमृत चरै

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराई राय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल सु

नाही, हैनस कसमल तू वह नाही, सो किरत सहारे सो एह ब्रत चढ़ै, अन दिन आप आप स्यो लड़ै, सुरखी पांचो राखै सबै, तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै, थावर थिर कर राखै सोई, जोत दी वटी घट मह जोई, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभ जान, रमत राम।

जीवों की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेऊ मुक्त भए।

साध कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

मोसौ को न कह समझाय, जाते आवागमन बिलाय रहाउ। बहु विद धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोए, कवन कर्म ते छूटी है, जेह साजे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हिरदय बसै, कौन हिरै अभमान। बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बेबिद बेकार, शुद्ध कवन पर्व होए वो, सोच कुंचर बिद व्यवहार। रब प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार, पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत लेलाट, हुन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक बेचार। अनक जतन निग्रह की

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको

दात जिन दिन कर कै कीती रात खसम वसार हैं ते कम जात नानक नावे बाज सनात आसा महला पहला जे दर मांगत कूक करे महली खसम सुने भावे धीरक भावे धक्के।

तरे जा तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसै मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का पाओ जति सती कह राख है पाओ नानक नाम विटो कुर्बान अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ गुरु पासों फिर चेला खाए ताम प्रीत वसै घर आए जे सो वरिया जीवन खान खसम पछाण सो दिन परवान दर्शन देखे दया ना हुए लय दिते बिन रह ना कोई राजा न्याओ करे हाथ होए।

कही है, सर्ब निरंतर रव रहया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा भया, रतन उपाय तरे खीर मथया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन।

बाद जब लगे हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिया सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन धोए साखी पास जैसा तू करहे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुझे आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर किरपा अपने घर आया ता मिल सखियां काज रचाया खेल देख मन आनंद भया सहो वी आहण आया गावो गावो कामणी बी बेक बीचार हमरै घर आया जग जीवन पतार रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जा सहो मिलिया ता जानिया तिहो लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी पूर्ण कार्य ना हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाई दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर सेव।

एक बहु करे दुख बिकिया सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर धन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तरे सिफत सलाहन सहज आनंद सखा सहन प्रेम गोविंद आपे करे आपे बख्शिंद तन

जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासे परमल रूप। उजल मोती चूग हंस, सर्व कला जगदीसे अंश। जो दीसे सो उपजे बिनसे, बिन जल सरवर कमल ना दीसे रहाव। बिरला बूजे पावे भेद, साखा तीन कह नित भेद। नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवंतो, राजन राज सदा बिकसंतो। जिस तू राख है कृपा तार, बूढ़त पाहन तार है तार। त्रिभवन मह जोत त्रिभवन मह जानिया, उल्ट पई घर घर मह आणिया। अहनस भगत करे निबलाए, नानक तिन कै लागे पाए। आसा महला पहला, गुरमत साची हुज्जत दूर। बहुत सियाण पलागे धूर, लागी मैल मिटे सच नाई। गुर प्रसाद रह लिव लाए, है हजूर हाजिर अरदास। दुख सुख साच करते प्रभ पास रहाओ। कूड़ कमावे आवे जावे, कहन कथन वारा नहीं आवे। क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मन तृप्त ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे। से जन बाचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाई, नानक विचों।

हर जियो राख हो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ, ता कै सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव, कर्म धर्म संयम सत भाव, नानक बख्शे पूछ ना होए, दूजा मेटे एको सो होए। आसा महला पहला, एक आव है एक जाव है आई, एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठौर ना पाव है, से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बेख वत अत भौजल।

गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यो जल अंब ऊपर कमल नारी। बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया आसा महला पहला सेवक दास भगत जन सोई ठाकुर का दास गुरमुख होई जिन सिर साजी तिन फुन गोई तिस बिन दूजा अवर ना को।

सच नाम जा नव निध पाई रोवै कूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यो रह समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हों पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किस लेवो जो उपजै सो अलख अपेवो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दिरडाई सगली सौदी टोटा आवे नानक राम नाम मन भावे आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी घुंगरू वाजै जे मन लागै।

मेरा सहु जागै हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहु जागै हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा।

पहलाधो पदे तित सरवरड पहले नवासा पानी पावक तिनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डुबी अले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया हासा महला पहला।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावण तां थी जां एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहू नखूटस नाहे आसा घर चौथा महला पहला।

रहाउ। धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए। पीर पेकांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ। फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू। पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू। पंच सखी मिल

हाँ, हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ।

कराया, तिस क्या कहिए भाई, जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद भावे, नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगाह बहुता बोले, नाव पवे बाजारी, सतरंज बाज

गुर का शब्द मने मह मुंदरा खिंता खिमा हंडावू जो किस करे भला कर मानू सहज जोग निध पावू बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी परम

अगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाईए पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाईए बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवै क्या मद सूचै भाउ धरे गुर की साखी।

का सोई, जे सकता सकते कौ मारी, ता मन रूस न होई रहाव। सकता सिंह मारे पै बगै, खसमै सा पुरसाई, रतन बगार वगोए कुत्ती, मोया सार ना काई। आपे जोड़ बछोड़े आपे, वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा, साध करे मन पाणे, खसमै नदरी कीड़ा आवै, जेते चुगै दाणी, मर मर जीवै तां किस पाई, नानक नाम वखाणे। राग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावै वडभाग, गुर कै शब्द सच्चै बैराग, खट दर्शन वरतै वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर कै दर्शन मुक्त गत होए, साचा आया।

सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगै ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची बाणी पाए भाग कोए।

हर की कीमत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, इनकै हम सद लाग पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगहा मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोए, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, आत निर्मल

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हौं मैं मारे सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम भुले संसार, बिन राशी कूड़ा करे व्यापार, बिन राशी वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गुआई।

कार रहाउ सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर धार नेड़े वेखे सदा हदूर मेरा प्रभ सर्ब रहया परपूर।

सोई, गुर बिन दाता अवर ना कोई, गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्शे बख्शनहार, आसा महला तीजा, गुर साहिर सतगुर सच सोए, पूरे भाग गुर सेवा होए, सो बूझै जिसे आप बुझाए, गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान बना

समावै सत संगत मेल सब सूझी पाए गुर का शब्द हर भगत दृढ़ाए भाणा मने सदा सुख होए नानक सच समावै सोए हासा महला तीजा पंचपदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर भेटे गुरु गोबिंद ना फिर मरे ना आवे जाए पूरे गुरु ते साच समाए जिनको नाम लिखिया तुर लेख ते अन दिन नाम सदा त्यावह गुर पूरे ते भगत वसेख रहाओ जिनको हर प्रभ लए मलाए इनकी गहन गत कही ना जाए पूरे सतगुर दित्ती वड्याई उत्तम पदवी हर नाम समाई जो किश करे सो आपे आप एक घड़ी मह थाप उथाप कह कह कहना आख सुनाई जे सौ काले थाए ना पाई जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मलाई सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहां शब्द वसै तहां दुख जाए ज्ञान रत्न साचै सहज समाए।

मन वसाई, नानक नाम रते सुख पाए। आसा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे बजाए। यह मन अंधा भूला है किसे आख सुनाई। अंतर लोभ भरम अनलवाऊ, दीवा बले ना सूझी पाए। गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाउ। गुरमुख नित हर लागे पाओ, पूरे ताल विचों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी भवजल तरे। गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आप वसै मन आए। हर कृपा करे सतगुरु मलाए, निश्चल भगत हर सियों चित लाए। भगत रते पिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा घर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर कै भाणै सतगुर मिले, सच सूझी होई। गुर प्रसादी मन वसै, हर बूझै सोई। मैं सहो दाता एक है, अवर नाही कोई। गुर कृपा ते मन वसै, तां सदा सुख होई रहाउ। इस जुग में निरपो हर नाम है, पाईऐ गुर विचार। बिन नामै जम कै वस है, मन मुख अंध गुआर। हर कै भाणै जन सेवा करै, बूझै सच सोई। हर कै भाणै सलाहियै, भाणै मन्नै सुख होई। हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया, मत उत्तम होई। नानक नाम सलाहे तू, गुरमुख गत होई।

तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गुआया, तुझे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन

भाग गुरमुख हर पाई नाम हीन कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीव आया वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आख बखाणी जप जप नाम मन भया आनंदा सत सत सत गुर।

मलधारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास ग्रासा रहाओ, नाम मैं सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मुए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवे हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, हल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सालाही, मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाउ, हर हर गुरमह भगत रखाई, गुर तुठा सिख देवे मेरे भाई, हउ मैं कर्म किस बिद नहीं जान।

अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार।

जोगी तो तरवाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगे हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

उपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान। असावरी महला चौथा, माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई। हों हर बिन खिन पल रह ना सकूं, जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ। हमरा मन बैराग बिरकत भयो, हर दर्शन मीत कै ताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सकै, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राख सरन जगदीश्वर प्यारी, मोहे शरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन आनंद होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

दुए मनुख पहचावो। तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

हमारो की लोक समाना, कर मस्तक धार राखियो कर अपना, क्या जान है एहो लोग अजाना रहाव, सुहाग हमारो अब हुन सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो, आंगन मेरा सोभा चंद, निसबासर प्रिय संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगल आभरण शोभा कंठ फूल, प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दूत की चूकी कान, सद कुचिया सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जो पिरह शिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा, दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन्मुकर परना।

जानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे नाले लए सदावे अनहुंदा अजगर भार उठाए।

सर्वां पंचपदे प्रथमे तेरी नीकी जात, द्वितीया तेरी मनिये पांत, तृतीया तेरा सुंदर थान, बिगड़ रूप मन मह अभमान, सोहनी स्वरूप सुजान विचक्षण,

मरना, मवा होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाउ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर हुई।

के चौपदे एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

चहो जुगह समाने, रैण पई तब अंत ना जाने। पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी, ब्रह्म ब्रह्म रोवे हाथ पछोड़ी।

निदान अमृत सार सद ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर किरपा हर प्रगति आया। मिल सतगुर धन पूरा पाया ऐसा हर धन संची है भाई। पाहे न जल जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ। टोट न आवे नखुट न जाए खाए खर्च मन रहया अगाए। सो सच साह जिस घर हर धन संचाना इस धन ते सब जग वरसाना। इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवां जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाड परानी।

पंजवां हर रस छोड़ होशै रस माता धर्म है वसत बाहर उठ जाता सुनी ना जाई।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद भरे पुर धारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वडियाई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बना।

हर रस पीवै अलमस्त मतवारा आन रसा सब हो शेरे रहाऊ। हर रस की कीमत कही न जाए हर रस साधु हाट समाए। लाख करोरी मिले ना किहे जिसह प्राप्त तिस ही देह। नानक चाख पये बिस्माद नानक गुरते आया साद। ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ मोह मिटावे। छुटकै दुर्मते अपनी धारी होए नमाणी सेव कमावह। ता प्रीतम होवह मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

ही ब्योहारा आज्ञामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मानुख देवरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरा कित ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाये गुण निदान नित गावै नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिन सिया थाउ ताप गया बचन गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां पांचत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

पन्या सदा सदा आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावह किलख जाही सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके पूरन करम सतगुर भेटे।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल मह जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी बहुत दरबहस्ती अर घोड़े।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा कर पंजवा महला पंजवा।

जन्म जन्म की मन धोवै पराई अपना कीता पावै इहा सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगे ठौर ना।

बाहर कोए अंतर मन मैला दोए ठौरे अपने खोए इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया आगे मुस मुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा बरमी मारी साफ ना मरी नाम ना सुनी डोरा रहाउ माया की किरत छोड़ गवाई भगती सार ना जाने वेद शास्त्र को।

कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचे आप निवारी पंच जना ले वसगत राखे मन मह इकंकारी तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द।

पियाया। रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा। बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया। होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया। गुरसिख राखे गुरु गोपाल काड लिए महापव जलते। अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते। छुटिया हलत पलत सुख पाइय सास ग्रास जपो जप रसना। नीत नीत गुण गाइय।

ते मुक्त भए अंधकूप महा घोर ते बाहा पकर गुर काढ लिए निरपव भए सगल भव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

कह जिस जाने ऊपर तेरी कृपा तिसको बेपना को पाख है ओहो सुख ओहा वड्याई जो प्रभ जी मन पानी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिले रंग माणी तुद आ गया।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर फिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरा ओले भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले रहाउ हुक्म बूझ रंग रस माणी सतगुर सेवा महानिर्वाणी जिन तू जाता सो गिरस्त उदास।

नरक सुर्ग फिर अवतार, गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वासे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर की

चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत।

काट ज पीजै, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरैन हर कीर्तन गाइय, सो जन जम की वाट ना पाइय, आठ पहर जिस विसरह नाही, गत होए नानक तिस लग पा।

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सत शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

सूत परोई काट काट अंतर रवे आसोई ओपत परलोखिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलाब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पय पनीत संतन की धूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग

ये मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख टीठा, प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे, कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा, सतगुरे अपना सद सदा सम्हारे। गुर के चरण केस संग चारे, जागरे मन जागन हारे। बिन

कोट प्रभ तोरी आसा महला पंजवा हर हर अखर दुए एह माला जपत जपत पहे दीन दयाला करो बेनती सतगुरे अपनी कर कृपा राखो।

मुख हर हर बोले, सोजन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला तां कै संग जाई, आसा महला पंजवां, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेप ना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई पर।

काम क्रोध अहंकार बगूते, हर सिमरन कार हर जन छूटे, सोए रहे माया मद माते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाउ मोह परम बहु जोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण त्याया, बंधन अंध कूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझ हर नेरा, कहो नानक जो प्रभ सरनाई, इहां सुख आगे गत पाई।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरत संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो ना

ना जानी भोर भया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करो री रहाओ कर्म है अमृत आनन सारेउ खिसर गयो भूम पर डारेउ साध मोहे लादी अहंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे

संत प्रसाद भली बनी जा कै ग्रह सब किश है पूरन सो भेटिया निरभय धनी रहा नाम जरड़ाया साध कृपाल मिट गई भूख महा बिकराल ठाकुर।

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा, आसा महला पंजवा, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर।

ग्रह महिमा हर उनके संग तू होई है जाहर उनके संग तू रखी पपोल उस बिना तू छुटकी रोल उनके संग तेरा मान महत उनके संग तुम साक जगत उनके संग तेरी सब बिद थाटी उस बिना तू होई है माटी ओह बैरागी मरै ना जाए हुक्मे बादा कार कमाए।

ना हम बांधे ना उस धंधा ना हम तहंदे ना उस मैल ना हम कौ मैला उस आनंद ता हम सद केला ना उस सोच ना हम

गर्भ मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आराधो, दिन सरहन ए सेवा साधो। भय कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

संबाहा निकसिया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे पच।

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिली तो वदे वधेरी गल चमड़ी जो छोड़े नाही लाग छुट्टो सत।

आठ घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

लिहो रलाई, नानक आए पये सरनाई, आसा महला पंजवा, आठ पहर उदक इशनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़े नाही, बहुर बहुर।

लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा।

सूख सहज मेरा धन सोहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब तरना, से उबरे जे सतगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बहंदा, हौ मैं पचै मन मुख मूराखा, गुर नानक बाहा पकर हम राखा, आसा महला पंजवा, सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी, ईहा ऊहा कामना प्राणी, संत तृपता से हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ, संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन सब किस दिया तिस चितवत ना।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाउ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम।

प्राण अधारी जाकी सेवा सर्व सुख पाव है अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है सदा आनंद आनंदी साहिब गुण निधान नित नित जापी है बलिहारी तिस संत प्यारी जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है रहाओ जाका दान नुखूटे नाही पली पांत सब सहज समाही जाकी बख्श न मेटे कोई मन वासाई है साचा सोई सगल समग्री ग्रह जाके पूरन प्रभ के सेवक दुख ना चूरन ओट गही निरपो पद पाई है सास सास सो गुण निद गाई है दूर ना होई कतहू जाई है नदर करे ता हर हर पाई है अरदास करी पूरे गुर पास नानक मंगे हर धन रास आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सगल को हुआ सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल तिस सतगुर को जाओ गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख बनासे सतगुर की शरणाई रहाओ गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए अगन बुझी

बंदन काट सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वड़े भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला।

गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहिब कै मन भावै वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु दिवाया भई अचिंत एक।

जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा मान माने तू धनी तेरा परवासा बिन साचे अनटेक है सो जानहु काचा रहाउ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए जिस गुरु पूरा भेट सी सो चले रजाए चतुराई सियाणपा कितै काम न आईऐ टुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाईऐ जे लख कर्म कमाईऐ किश पवै ना बंदा जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा आसा महला पंजवां सर्व सुखा मैं पालिया हर जीवड़ ना कोई गुर टुठे ते पाईऐ सच साहिब सोई बलिहारी गुर अपने सद सद कुरबाना नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो कीजै दाना रहाउ भागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कहां गुर विवेक सत सर ओहो आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर नाम त्यावहु सद सदा हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कह संगे आसा महला पंजवां साई अलख अपार भोरी मन वसै

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाऊ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका

हर रंग माणीय आवहो संत मलाह हर कथा कहानियां अन दिन सिमरहै नाम तज लाज लुकानियां रहाउ जप जप जीवा नाम होवै आनंद घना मिथ्या मोह संसार झूठा विनसना चरण कमल संग नेहो किने विरले लाया धन सुहावा मुख जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर होए रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

भाव कर तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ भरता कह सुमानी है एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की से

सर्व सुख पावों आज्ञा पावों के ना पावों। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हों मांगो आनल जावो। सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सत पुरख की सतगुर पुरख त्यावो। पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो।

नाम दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवा महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा आसा महला पंजवा अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर

गंधण वहन सुनह उर्जावह नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत अमाहयो बूजी उल्टाया पारतान पारतान पारती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाई।

कै साध लुभाए झूठ धंध दुर्गंधे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बधाटै बहुर बहुर जनमाते जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन तो गुरमेल सब सुख लादे कहो नानक दिन रैन त्यावो मार काढ़ी सगले अपादे इउं जपियो भाई पुरख बधाते भयो कृपाल दीन दुख भंजन।

आद कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मुहूर्त रंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ, पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तूमर, जैसा संग बिसियर स्यो है रे, तैसो ही एहो परग्रहो, बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना, छोड़ जाहे तिन ही स्यो संगी, साजन स्यो बैराना, सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा, कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा, आसा महला पंजवा, दोपदे लूक कमानो सोई तुम पेखेओ, मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे, फिर पाछै पछतानी, प्रभ मेरे सब विद आगै जानी, भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछै जी की मानी रहाओ, जित जित लाए तित तित लागे।

रहाउ। तिस सेवक कह हो बलिहारी, जो अपने प्रभ भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसन आवे। आसा घर ग्यारवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावे बहु बिद, जैसा है ओहो तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर, सुख नाही परवेसारी, साजन संत हमारे लीता, बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाई, एहो जन्म पदार्थ।

वहां के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंच हो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बलीरे।

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना

पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल

महा भौजन लंघी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिया मिल।

हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाए संगे एक स्यों लिव लाओ रहाओ वेद शास्त्र जन

दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत सास सास त्याए सो प्रभ त्याग।

नाम चराव हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय होए सहाई।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासै हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप कृपाल कृपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता।

कारण करना तारण धरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओलाह अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राखो संत संगाहे नाम त्यावो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आईऐ सर्व फल पाईऐ सगले दुख जाही जीअन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवा घर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावे लोभ बिखया बिखे लागे हर वित चित दुखाही

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब

प्रभ त्यावं भ्रम पीत जीत मटावं निध नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल।

बिनस ना जाए मरहां गुर ते जानिया हां नानक मन मानिया मेरे मना। असावरी महला पंजवां एका ऊट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मन है निदान लहो हां सुख

देसया हां, संत उपदेसया मेरे मना, जिस जन नाम सुख हां, तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सब को तिस मन्ने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रभ पाया मेरे मना, सावरी महला पंजवा, मिल हर जस गाइए हां, परम पद पाइए हां, वा रस जो विदे हां, ताको सगल सिदे हां, अन दिन जागया हां, नानक बड़ भागया मेरे मना, रहाओ संत पग धोइए हां, दुरमत खोइए हां, दास हरेन होए हां, व्यापै दुख ना कोए हां, भगत

सोरो वै दुख कोए, सोरो वै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द भै तरना।

बिन भगत सरोत मुए को सच रोवह मीत त्रै गुण रोवह नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौंपो कृष्ण परीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन

0: भ्रांत
1: सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मनते मनते।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

सोग अमृत ज्ञान महारास भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली जोत तेरा सब कोई आपे जोड़ बछोड़े सोई आपे करता करे सो होई ताहे उसारे हुक्म सुमावे हुक्मों वरतै जो तिस पावै।

कहावे हैं बीते, बिन नावे मन झूठ अनीते, कहां चलो हो मन रहो हो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लाभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नावन साच पछाणे, अंतर की गात गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टिकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हर गुण गाऊं, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

नानक राम नाम मन राता, आसा महला पहला, मन मैगल साकत देवाना, बन खंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लह घर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा, सिमरहो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हो हौमै कौरा, रहाओ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुर मेले, काल कंटक मारे सच पेले, इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा, इहो मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहो मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रिभवन सोजी होई, इहो मन जोगी भोगी तप तापै, गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै, मन बैरागी होमै त्यागी, घट घट मनसा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखै, दर कर महली।

तू आप भलावै है नाम विसार, तू आपे रख है कृपा तार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जप है जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

मूख तिस लागे। जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग। नानक मुक्त भये हर रंग, आसा महला पहला एक तुकी। गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

गवाइयां रंग तमाशे चाहे बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए एक ना वक्त खवाई है एक ना पूजा चाहे क्योंकि बिन हिंदवाणिया क्यों टिक्के कड है ना आए राम ना कब हूं चेतेओ हुन कहन ना मिले खुदाए एक घर आवे है अपने एक मिल मिल पुछ है सुख एक ना एहो लिखिया बह बह रोवे है दुख जो तिस भावे सुख।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ को आटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग

बख्श नहार शब्द कमावही। नानक मंगै सच गुरमुख कालिया, मैं तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहाली है। आसा मोहल्ला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला सच टिकै घर आए।

ताम मन भावई चले सदा रजाई अंक सुमावई सच्चा साहिब मन वसै वसया मन सोई आपे दे वडियाइयां दे टूट ना होई।

छूटी है मन मुख पत खोई रहाउ जिन्नी एको सेवया पूरी मत पाई आद जगाद निरंजना जन हर सरनाई साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई

हर चरणी आसा महला पहला केता आखण आखी है ताके अंत ना जाना मैं धरिया धर एक तू मैं तान सताना नानक की अरदास है सच नाम सुहेला आप गया सूजी पई गुर शब्दी मेला रहाउ हो मैं गर्भ गवाई है पाईए विचार साहिब सिओ मन मानिया दे साच आधार अहनस नाम संतोखिया सेवा सच साई ताको बिघन ना लाग गई चाले हुक्म रजाई जो चले सो पवे खजाने खोटे ठवर ना पाएनी रले जूठाने नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाईए खोटे नदर ना आमनी ले अगन जलाईए जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई तिन्ना परम ना भेद है हर रसन रसाई।

जो तिस पाया सच्ची सच्ची दात देह दयाल है जिस सेवी दिन रात नाम अमोल है तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई जन्म मरण का दुख घणो नित सहसा दोई बिन नावे क्या जीवना हित त्रिग चतराई सतगुर साधना सेविया हर भगत ना पाई रहाऊ आवन जावन तौ रह पाइए गुर पूरा राम नाम धन रास दे बिनसै भ्रम पूरा संत जना को मिल रह तन तन जस गाए आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख हर पाए नटुए सांग बनाया बाजी संसारा खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा हों मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा सब जग हारे सो जिने गुर शब्द विचारा ज्यों अंधले हाथ टोहनी।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ता के रूप न जाही लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या तू करे प्राणी।

हर जीव मन वसै सब दुख वसारन हार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रे पवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखै उर धारे साची सोभा साच द्वारे सेवट भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उदरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर धार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मै बूझै निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागै जागाए सोई सतगुर नाम बुझाया विण नावै भुख ना जाई नामे तृष्णा अग्न बुझै नाम मिलै तिसै रजाई रहाउ कल की

जप पढ़िया गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िया होमै मार, हर जपिया पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वडियाई, एको नाम चेत मेरे भाई,

घर घर पाया भगती भरे भंडारा गुरमुख नाम त्याई है बूझे विचारा गुरमुख भगत सलाहा है अंतर शब्द अपारा गुरमुख सुख उपजे दुख कदे ना होई गुरमुख हम मैं मारी है मन निर्मल होई सतगुर मिले है आप गया त्रे पवन सोजी पाई निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मलाई पूरा गुर समझाया माति उत्तम होई अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई पूरा सतगुर ता मिले जा नदर करे किले विक पाप सब कटी है फेर दुख बिघन ना होई अपने हाथ बढ़ियाईया।

बाहर किश नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहा हर का गाहक होए सो लए पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिष्ट देखे मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरै मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरै वांगू पकड़ी बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई नानक।

नानिवह दूजा भाउ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वासे आवे गुर प्रसादी ठाकिए ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सुवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावे फिर अपना सच्ची सेज सुपाय फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाय ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सब रहाई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाए प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जत पथ शब्दे होय बिन नावे सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होय हों हों कर दी सब फिरे बिन शब्द हों ना जाय नानक नाम रते तिन हों मैं गई।

आप दे आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोए ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोय जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

ठीक है बहुविद श्रिष्ट उपाई हुक्मी कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिरकार एक ना बख्शे मेल लह एक दरगाह मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उतवताए नदर करे जिस आपनी तिस नु भावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाए गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द विचार नानक इस देही विच नाम निधान है पाईऐ गुर कै हेत अपार आसा महला तीजा सच रतियां सुहागनी जिन्ना गुर कै शब्द शिंगार घर ही सो फिर पाया सच

रहाउ। एक पेरह दूर ना जाननी, दूजे परम भलाए, क्यों पाए निडोहागनी, दुखी रहन बिहाए। जिनके मन सच वसिया, सच्ची कार कमाए, हन दिन सेव है सहज स्यों, सच्चे माहे समाए। दोहागनी परम भलाइया,

ये कहे मत मन भरम भलाही गुरपूछ सेवा करह सच निर्मल मन वसाई सुहागणी सदा फिर पाया हों मैं आप गुआई फिर सेती अन दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए मेरी मेरी कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागणी अंत

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार। आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई। ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई। रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई। बिन कर्मा किश पाई नाही क्या कर कहया जाई। आप पछाण है शब्द मर है मनहु ताज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नामे सुख ना पाईए ना दुख विचों जाई। इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाए दुहागनी पिर की सार ना जानही क्या कर करहे श्रृंगार। पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी शिंगारियां अपनी सह लईयां मलाई। मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जमहै पी मरह जमदर होए खुआर। आप मलाइन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाणे मुख उजली तित सच्चै दरबार। आसा महला पंजवां अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई। रहाउ साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुर ज्ञान।

सत सहज सुख के सबहाट, साहा वपारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साह सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया मिलो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाहे खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चल तो पेखी है निहचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों निहचल पावह ठाव, मीत साजन सुत

चरण कमल बोहित भय लग सागर तरयो ते भेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद भावे सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हस।

सुख सिंगार बिखिया के फीके तज छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरनी पाए जो जन राते राम स्यों प्यारे अनत ना काहू जाए हर रस जिन्नी चाखिया प्यारे तृप्त रहे आगाए अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई जन्म मरण दुख कटिया प्यारी।

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाही जाय। जो तू कराम है सो करी प्यारे, अवर किस करन ना जाय। दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारे। तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वरतदा प्यारी, घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे, नानक।

सब थाई एक वसिया मन माही तत्तै तंच करहू क्या प्राणी तरी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठै ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डै दंप करहु क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसै सरी वहो ता सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहया तड्डै ताहे उसारै आपे ज्यों तिस पावे तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चिल्लाए तिस निस्तारी जा को नदर करी नाणै रवत रह घट अंतर हर गुण गावे सोई आपे आप मलाए करता पुनरप जन्म ना हुई तत्तै तारू पवजल होआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया थत्तै थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस भावे सोई भला दद्दै दोष ना देऊ किसै दोष करमा आपणिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अवर जना तद्दै धार कला जिन छोड़ी हर की जी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्ने ना हां भोग नित भोगै ना दीठा ना संभलिया गली हो सुहागण पैणे कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पै पातशाह परमेश्वर वेखण को परपंच किया देखै बूझै सब किस जाणै अंतर बाहर रव रहया फप्पै फाही सब जग फासा जम कै संगल बंध लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर सरनागत भज पया बब्बै बाजी खेलन लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालन आप लगा पब्बै पालह से फल पावह गुर प्रसादी जिन को पौ पया मनमुख फिर है ना चेतह मूड़े लख चौरासी फेर पया मम्मै मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरो पड़िया मम्मा अखर विसरिया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाणै गुरमुख आखै गुरमुख बूझै गुरमुख एको जाणै रारै रव रहया सब अंतर जेते किए जनता जंत अपाई तंदै सब लाए कर्म हुआ तिन नाम लया लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाणे तां कै हुक्म पया ववै वास देओ परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखै चाखै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहया राड़ै राड़ करहै क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोह कुर्बान किया हाहै होर न कोई दाता जी उपाई जिन रिजक दिया हर नाम त्यावो हर

क्यों शूतह जम पाकड़िया बब्बै बूझह नाही मूड़े परम भुले तेरा जन्म गया अणहोंदा ना उतरायो पांदा अवरा का भार तुद लया जज्जै जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावहगा एक शब्द तू चीनह नाही फिर जूनी आवहगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदी पिछों दे गल चाटड़िया ससै संयम गयो मूड़ी एक दान तुद कथाई लया साई पुत्र

रूप पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया कके काम क्रोध परमयो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुण है तू बहुत पुकार है विन बूझे तू डूब मुआ तत्ते तामस जले हो मूड़े तत्ते थान पृष्ठ हुआ कग्गे कर कर फिर है तू मूड़े दद्दे दान ना तुद लया पप्पे पार न पवे ही मूड़े पर पंच तू पलच रहया सच्चे आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बे पवजल डुबो हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मह पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद विसरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जे कदे ना झूरह मूड़े सतगुर का उपदेश सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाहे पया गगे गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मन मुख पढ़े तीता दुख लागे बिन सतगुर मुक्त ना हुई रारे राम चित कर मूड़े हृदय जिनकै रव रहया गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया तेरा अंत ना जाई लखिया अकथ ना जाई हर कथिया नानक जिन को सतगुर मिलिया तिनका लेखा निबड़िया राग आसा महला पहला संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद जोबन बालड़िए मेरा पिर रलिया ला राम तन पिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन पिरह मेला हुए स्वामी आप प्रभ कृपा करी।

अवगण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावे ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औ पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री धर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यों भावे त्यों रावे तन मन पिर आगै शब्द सुभागै घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईऐ बहु चतुराईऐ भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारी हम नाही लोकाणी हासा महला पहला अनहदो अनहद वाजै रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम पन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनो सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी काम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजै दाते तेरी भगत भरे भंडारा राम नाम बिन मुक्त ना होई ना

आदि पुरुष अपरम्परु तारे नाम अग्मय गोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आदि पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले।

नाम अवगुण परहर करनी सारी दर सच्चे सचे आरु आवण जावण थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन परगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जाका होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बीचार जियो तू सबनी ताई जितै हों जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहु ना आवै हार जियो ते कबहु ना हारह हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै काली जै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हों तिसै बिटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो इन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा न मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहे से सुकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहे जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला पहला शंत घर तीजा तू सुन हरना कालिया की वाड़िया राता राम दिख फल मीठा चार दिन फिर हुए ताता राम फिर हुए ताता खरा माता नाम बिन परतापे ओहो जीव सायर दे लहरी बिजल जिमै चमकै हर बाज राखा कोई नाही सोए तुझह बसारिया सच कह नानक चेतरे मन मरह हर ना कालिया पवरा फूल पवंतिया दुख अत भारी राम मैं गुर पूछिया अपना साचा बीचारी राम बीचार सतगुर मुझे पूछिया पवर बेली रातो सूरज चढ़िया पिंड पड़िया तेल तावण तातो जम मग बादा खाहे चोटा शब्द बिन बेतालिया सच कह नानक चेतरे मन मरह पवरा कालिया।
मेरे जी अड़िया परदेसिया कित पवह जंजाले राम साचा साहिब मन वसै की पासह जम जाले राम मछली वछुनी नैण रुनी जाल बदक पाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया भगत कर चित लाए हर सिउ छोड़ मनु अंदेसिया सच कह नानक चेतरे मन जी अड़िया परदेसिया नदियां वाह विछुनिया मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस भरे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाने सतगुरु जिन चेतिया बिन नाम हर के भरम भूले पचह मुगध अचेतिया हर नाम भगत नारद साचा।

तुम करहु ता फिर सह खुशी न आवी। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे, कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे, हर सोहला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने, जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाता हरी केरा सोई।

शब्द संभाले, साथ तेरे सो सहु सदा है, एक खिन हर नाम संभाले, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंत परम पद पावे, साचे नाल तेरा गंढ लागे, गुरमुख

तावत थम्या निज कर वस्या आई नाम विहाजे नाम लई नाम रहे समाई तावत थम्या सतगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज धुन उपजै जित शब्द जगत थम रहा।

मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी वधाई।

महा आनंद सहज भया, मन तन सुख पाया, सो सहो चित आया मन वसाया, अवगण सब वसारी, जां तिस भाणा गुण प्रगट होए, सतगुर आप सवारी, से जन प्रवान होए, जिन्नी एक नाम दिड़िया, दुतिया भाउ चुकाया, इयों कह नानक धन सो वेला, जित मैं सतगुर मिलिया, सो सहो चित आया, एक जंत परम पुले, तिन सह आप पलाए, दूजे पाए फिर हैं, हम मैं कर्म कमाए, तिन सह आप पलाए,

कथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवनो मैं जीवन पाया गुरमुख पाए राम हर नाम देवे मेरे प्राण वसाए राम हर हर नाम मेरे प्राण वसाए सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाज है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचे हैं भोगे हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिकम सहे।

पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवे है लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

गवाई मन तन सीतल शिंगार सब हुआ गुरमत राम परगासा नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा जिन्नी रामो राम नाम वसारिया ते मन मुख मूड अपागी राम किन अंतरे मोह व्यापै खिन खिन माया लागी राम माया मल लागी मूड पय अपागी जिन राम नाम नह पाया अनेक कर्म करह अभमानी हर रामो नाम चुराया महाबिखम जम पंथ दुहेला कलू खतम हो अंधियारा नानक गुरमुख नाम त्याया ता पाए मोख द्वारा रामो राम नाम गुरु राम गुरमुखे जाने राम एहु मनुआ खिन ऊब पयाली परम दा इकत कर आणै राम मन इकत कर आणै सब गत मित जाणै।

नाम वसै किन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया राम नाम गुण गाई। दुर्मत कुबुद्ध गई सुध हुई राम नाम मन लाई। सफल जन्म शरीर सब हुआ जित राम नाम परगासिया। नानक हर पज सदा दिन राती गुरमुख निज घर वासिया। जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया राम। जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम है अवर ना पाया राम। राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

पियो, हर सेवा भाई परम गत पाई, हरे उत्तम हर हर काम जियो, हरे उत्तम काम जपिए हर नाम, हर जपिए अस थिर होवै।

दुख भनासन पतत पावन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी सत गुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी अरादिया जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो हर

हर गुण गाया। जन्म जन्म के किल विक दुख उतरे, हर हर नाम समाया। जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया। से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगै पग साधू,

जग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभ एको। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई। हर दरगाह पावे मान जियो, सत जुग सब संतोख सरीरा। पग चारे धर्म ध्यान जियो, एता जोगे आया अंतर जोर पाया। जत संयम कर्म कमाए दियो, पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया। मन हृदय क्रोध जलाए दियो, मन हृदय क्रोध महा बिसलोद। निरपता वह लड़ दुख पाया, अंतर ममता रोग लगाना। हों मैं अहंकार वधाया, हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर। देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो, एता जोग आया अंतर जोर पाया। जत संयम कर्म कमाए जियो, जुग द्वापर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाय जियो, तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है। हत किरिया कर्म कमाए जियो, किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया। दोए पग टिकै टकाए जियो, महाजुद्ध जोध बहु कीने। विच हों मैं पचै पचाए दियो, दीन दयाल गुर साध मलाया। मिल सतगुर मल लह जाए जियो, जुग द्वापर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाए जियो, कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टकाए जियो, गुर शब्द कमाया औखद हर पाया। हर कीरत हर शांत पाए जियो, हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई। हर हर नाम खेत जमाया, कल युग बीज बीजे बिन नावे। सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुर पूरा पाया। मन हृदय नाम लखाए जियो, कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टकाए जियो, आसा महला चौथा। हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुर मस्तक भाग प्राण जियो। तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नाम मैं हर गुण गाया। मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नाम मैं हर सोहाया। ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो। हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रदान जियो। तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोव है। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कद ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरना होई, हर हर नाम अमर पद पाया।

जियो जग उपजै बिन सह बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो ता की गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो गोविंद अलख अपार।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहया समाए जियो। काटे अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत ना पाया तिस रूप नारेख अदिष्ट अगोचर गुरमुख अलख लखाया। सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रविया एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो।

सब तेरे शब्द समाए दियो। सब शब्द समावे जां तुद पावे, तेरे शब्द वड्याई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए। शब्द रहिया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईए, नानक नाम समाए दियो। सब तू है करता सब तेरी वड्याई, ज्यों पावे तिवें चलाए दियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा।

तेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पेरा मुकी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा। मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनत तरंगा। मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा। दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी। हौ मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया। भगत वच्छल हर बिरद है।

आई। आसा महला चौथा, जिन मस्तक तुर हर लिखिया, तिना सतगुर मिलिया राम राजी, अज्ञान अंधेरा कट।

जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराई। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर।

नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिने अंतर हर हर प्रीत है। ते जन सुगड़ सियाने राम राजी, जे बाहर हूं भुल चुक बोल दे। पी खरे हर पानी,

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजी गुरसिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल ताए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा गुरसिखा

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर कुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर कुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु टुठा। जन नानक हर हर होया, हर हर मन बुठा। आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु।

सुख सद हुई, जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्हा मिलिया हर सोई। जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजी। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा।

करे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे चातरक बूंद जिवें मन शीतल हुआ।

सब किस मैं सब किस पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचरज सोब बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नव निध पाई सरसे अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना साणथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्रभ

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे।

न हारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा तारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम हर धूड़ी नाइय मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर शरण तरिय अपन।

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालक जीना सुत प्रात।

गीत की जय। आसा महला पंजवा सलोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब हर पाया मन माही। संत जा को खोजह असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट आराध ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत हुए गते। कोट बिसन अवतार शंकर जटा धार, चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी। अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवा सलोक, उदम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवह दुख दर्द भ्रम जाय। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। भेटत साधु संग जमपुर नह जाइए। दुख दर्द ना पौ ब्यापै नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दै वसिया, मिटे तिसै वसूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरि। सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरी। आद अंत बेअंत खोज।

सहज सुभाई भगत कारज सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत।

अवनाशी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाण गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सहनार सोभा पूर्बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुरबचन जाने जा को राम पतार ताके आनंद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया, परम मोह विकार दूजा सगल तिनह त्यागिया। मन शांत सहज सुभाव बूठा, आनंद मंगल गुण गाया। नानक वखाणे गुर बचन जाने जा।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामो शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया, समर्थ अगत अपार निर्मल।

सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल भरम करम अहंग ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक।

संग मीठे भोग सोहन भ्रमत भार अगंत आयो बहु परदेसह धायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उधारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरपो पये पराण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंद पजानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कशु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रहे अग्न सागर भये शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूरन साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरल किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निद जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवा शंत कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रैनड़ी है चाम कन तारे जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो ताज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी से जड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखहगामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखियां कुछ है कहो कंत नी छाणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे हासा महला पंजवा उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या
तन पसम टेरी जम है हेरी, काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें, पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये, नित पाप कमायन पापा कमाने छड़ह नाही, लै चले कट गलावया हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ, क्यों लए उडारी हस्ती गर्त पया, क्यों तरियै तारी तरण देह ला पया, खिन मह खसम चेतना यार।

धर्म करे दूत भय पलायन। धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निध सिद चरण गहे तां केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने कर धारम।

ना जाइय। आठ पहर हर नाम सिमरहो, चल तेरे साथी, भज साध संगत सदा नानक, मिट है दुख कमाते, वलवंच कर उदर भर है, मूर्ख गावारा, सब किस दे रहे।

ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल मही अल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्थर किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजाले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श पेखत।

उगवह सूरज चढ़ है हजार एते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी माने।

दूजा एहो जग सच्चै की है कोठड़ी सच्चे का विच वास इक ना हुक्म समाए लए इक ना हुक्मे करे वनास इक ना पाणे कढ ले इक ना माया विच निवास एव पे आखना जापई जे किसै आणे रास नानक गुरमुख जानिए जां को आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना मैं तर्म बहालिया

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग।

बहुते जन्म परमिया तां सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हूं लोक सबाया सतगुर मिलिया सच पाया जिनी विच्चों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सलोक महला।

माल धन वर्तन सर्ब जंजाल, नानक मुस्से ज्ञान विहूनी, खाए गया जमकाल महला पहला, वायन केले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावा चाटे पाई।

सगल जहान सेवक सेव है कर्म चढ़ाओ पिन्नी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू मादानिया अनगाह पंखी पौंदिया लैन ना साह सूए चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदिया गणतना अंत बंधन बंद पवाए सोए पै किरत नचै सब कोए नच नच हसे है चल है से रोए उड ना जाही सिद्ध ना होहे नचन कुदन मन का चाऊ नानक जिन मन पाओ किन्ना मन पाओ पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है नाए लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करें दी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत।

तीर्थ नावहें अर्चा पूजा अगरवास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन।

किथहु उपजे कित संजम एह जाय हमें एहो हुक्म है पय किरत फराह हमें दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनहो जनहो हित संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतुखे जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन्यो पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस तिस देवान अपहग।

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै सच वसाया,

दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना पहरै अहनिस कहरै, मोन बगूता क्यों जागै गुरबिन सूता, पग उपे ताना अपना किया कमाना, फल मल खाई सिर शाई पाई, मूर्ख अंधे पत गुआई, बिन नावे किस थाई ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाई, हर का नाम मन वसाई, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते निह केवल, हम मैं शब्द जलाई पौड़ी, भगत तेरे मन पावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे, नानक करमा बाहरे, दर ढो ना लहनी तावंदे, एक मूल ना बुझन अपना, अणहुंदा आप गणाई दे, हों ढाडी का

कप्पड़ कूड़ रूप अपार, कूड़ मियां कूड़ बीबी खाप होए खार, कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखियों

सतगुरु नो पुछ कै बह रह करे निवास, सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी, दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाईऐ, कूड़ा लालच छड्डीऐ होए इक मन अलख ते आईऐ, फल तेवे हो पाईऐ जे वे ही कार कमाईऐ, जे होवै पूरब लिखिया ता धूड़ तिना दी पाईऐ, मत थोड़ी सेव गवाईऐ। सलोक महला पहला, सच काल कूड़ वरतिया कल कालक बेताल, बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल, जे एक होए ता उगवै रुती हूं रुत होए, नानक पाहै बाहरा कोरै रंग ना सोए, भै विच खुंभ चढ़ाई है शर्म पाह तन होए, नानक

हिकमत हुज्जत संजय करह प्यार धर्मी धर्म करह गावावह मंगह मुख द्वार जति सदावह जुगत ना जानह छड बह घर बार सब।

देखे पत पवे चंगे सेई के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया इन्ना जनता कै बस किश नाही तुद वेकी जग ते उपाया इक नानू तू मेल लै इक आपहु तुद खवाया गुर किरपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया।

न होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।

है गुनाहगार ता उमी साधना मारी है जेहा काले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है अड़िया अते उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाहु त्रेत रथ जत का जोर अगे रथवाह द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह कल युग

तह साच रहे सबको सच समावे। ऋग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया बिंदरा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लुह भया।

फिर पाइय होर नानक तग ना टुटई जे तग होवै जोर। महला पहला नाए मन्ने पति उपजै साला ही सच सूत दरगाह अंदर पाइय तग ना टूट सपूत। महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी भलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे वत्तै वट तागे अवरां

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

ताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद हुना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश तान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

वडो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदै लाएंदा नदर उपट्टी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहै कर मोहे पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला ज्यों जोरू सिर नावनी आवे वारो वार जूठे जूठे।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन पाम दे हर बुझन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

कोई, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोई, नानक सूतक एव ना उतरै ज्ञान उतारे तोय महला पहला। मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप, कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे। नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे। महला पहला सभो सूतक भरम है।

तेत जित मुख नाम ना ऊच रह बिन नामे रस खाए नानक एवे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला पांड जमीए पांड निमीए पांड मंगन वे आह पंडो हो ऐ दोस्ती पंडो हो चले राह पांड मोआ पांड पाली है पांड हो ऐ बंदान सो क्यों मंदा आखिए है जित जम है राजान पंडो ही पांड उपजे पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गार बहंडी है।

पहला नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का हुई फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए फिक्का दरगाह सटिए मुहे तुका फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए। महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरे नाही मैल जिन पाटे अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसे हैं रंग रूवे हैं चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

कह तारी है, देख है कीता अपना, तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनु विसारी है, अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है। सलोक महला दूजा, एह कने ही आशकी, दूजे लगे जाए, नानक आशक कांडी है, सद ही रह समाए, चंगा चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए, आशक इहो ना आखी है, जे लेखे वरते सोए। महला दूजा, सलाम जवाब दोवें करे, मुंडहों कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़ियां, थाए ना काई पाए पौड़ी, जित सेवे है सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना, सा काल बुरी क्यों काली है, मंदा मूल ना कीचे ही, दे लम्मी नदर निहाली है, ज्यों साहिब नाल ना हारी है, ते वेहा पासा टाली है, किश लाहे उपर काली है। सलोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी, नाले गार बवाद, गल्ला करे कनेरिया, खसम ना पाए साध, आप गवाए सेवा।

ग्रंथ न जापनी हरता के पारावार। आप कराए साखती फिर आप कराए मार। इक ना गली जंजीरियां इक तुरी चढ़े बिसियार। आप कराए करे आप हौ कैस्यो करी पकार। नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। सलोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूरन दे। इकनी दुध समाई है इक चुल्ला रहन चढ़े। इक निहाली पै सवन इक उपर रहन खड़े।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभ हो।

इन बिद अपियो ना चूके कही ना उपजे उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग वे हर के संतना आखी है बानारस के ठग ऐसे संतना मोह को भाव है डाला स्यो पेडा गटकाव है रहाव बासन मांज चिराव है ऊपर काट

गया न बाजी हारी, मुई मेरी माई हों खरा सुखाला, पहरों नहीं दगली लगे ना पाला, रहाऊ

मेरा मन तन भीने पिता हमारो वद गोसाई तिस पिता पह हौ क्यों कर जाई सतगुर मिले ता मार्ग दिखाया जगत पिता मेरा मन पाया हौ पूत तेरा तू बाप मेरा एकै ठाहर दोहा बसेरा कहो कबीर जन एको बूझिया गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट इकत पत्र पर पानी आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी नकटी कोठन गन बाडाडू किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलियां की हो।

आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तऊ मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे।

आवे, कर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, बंस को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुन गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया फहरी काया कर तुई

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, तिन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। हरद शरीरी नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाड़ कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तुहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपराध।

ना खंडस अवगन मेरा रहाउ, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन मन

डारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकस, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सो कृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विदबानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया मुगद कह धन मेरा, जमका डंड मूंड मह लागे किन मह करे निवेरा, हर जाने उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावे सत

मिट्टी आसा हम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन पावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोले बन नहीं आवे रहाओ रोजा तरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा कट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊ बिचारे कलमा अकलह जाने पांचों मुसम सला बसावे तब तो दीन पछाने खसम पछान तरस कर जी मह मार मणि कर फीके आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीके माटी एक पेख तर नाना ता मह ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा गगन नगर एक

विच राय, कह बिसियर को दूध पियाए। सत संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुआन सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो।

घर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती, तेहे रावण घर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरमत राम

राम रमत तिस सब किश सूजे, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिप दे आठ, दो तुके सात, एक तुका एक, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नाही बोया रहाओ, बारक ते बिरद भया, होना सो होया, जां जम आए चोट पकड़ै, तब है काहे रोया, जीम ने की आस करहै, जम निहारै सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत ढाल पासा आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हों, पांचो तत बराती, राम राय स्यों पावर लै हों।

आओ नाभ कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली नंद गहेली देवर कै बिरह जरो रे मेरी मत बौरी मैं राम बसारे।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांदिया मैं राम रमत सुख पाया।

गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कबहू ना पार उतार चिरायो हो कैसे खसम हमारे तू बामन मैं कांसी के जुलहा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर सो मोर त्याना आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जै पास ना देख आग काल पास ना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग कर विचार विकार पर हर

साज सब ठाका राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ। काम क्रोध माया ले जारी, तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी।

मह तेरा सोच विचार ना देख खबर ना कर है दीन के बौरे ता ते जन्म अलेख रहाव साचक ते बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीत।

गुप्त ही रा प्रगट भयो जब गुरगम दिया दिखाई आसा पहली कुरूप कुजात कुलखनी सहरे पेये बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और तरियो आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम रमऊआ।

रहु रहुरी बहुरिया कुंगट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाउ कुंगट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे आन तनायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले बेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई। दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र

एक मन सत सहंस जैसी पूत पूत प्रभ सोई रहाउ जल तरंग हर फेन बुद्ध बदा जल ते भिन्न न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी आसा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर कौ स्नान करूं बयालीस लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सद केला रहाओ आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं पहले दूध बटारे ओ बछरे बीठल पहला काहे करूं।

आद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है तां की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिहि संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणे जो जाने सो जान संत अनंत है अंतर नाही आसा तुम चंदन हम ए रंड बापरे संगत मारे बासा नीच रूख ते ऊच भये है गंध सुगंध निवासा माधो सत संगत सरन तुम्हारी हम योगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम बपरे जस कीरा सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डरपै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देओ दूध पियाया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देखै देखै सुनै बोलै दौर्यो फिरत है रहाउ जब कश पावै तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रास कसै लुभाना बिन

सुनिए जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बिख काम लुभ धराता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाओ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये, जोत समाए समानी जाकै, अशली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरनी तर, मिल जन संत समानिया, महला पंजवा, गोविंद गोविंद गोविंद सा।

मन पीरिया कंचन मने पासे कलवत चीरिया से कहयाती जागना कोई थिर रहे आ जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक कुंजा चेत डौ सावन बिजुलिया से आले सोहंदिया फिर गल बाहड़िया चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदिया शे माह तुड़ंदिया हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे।

उपजे भेद पढ़ मुख कंठ सवार ताको अंत न जाई लखना आवत जात रह गुबार प्रीतम क्यों बिसरह मेरे प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाउ राव सस दीपक जाके त्रे भवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाद करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला।

करे गुर आगै जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोए जी हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

आओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागै, हर नाम मेरा मन तृप्त है।

जाई हर मेरा धन मेरे साथ चाले जहां हों जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा हुआ कहना कछु ना जाई गुजरी।

गुर आपने सद बलिहार जाऊं, सतगुर मिले हर मन वसे सहजी रह समाई रहाऊ। जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आई, बैराग ते हर पाईए हर स्यों रह समाई। से मुकत जे मन जिन है फिर धात ना लागे आई, दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई। नानक गुर ते गुर होया

सहजन कह कपट वसै, बाहर हूँ संत कहाहे, तृष्णा मूल ना चुकई, अंत गए पछताहे। अनेक तीर्थ जे जतन करे, ता अंतर की हम मैं कदे ना जाए, जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राये तिस देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो हम मैं मारे, ता हर भेटै सोई। गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह सदा सुख होई। रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दीखिया देवे साच बुझाए, बिन पारस पूज ना हो वई, बिन मन परचे अवरा समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओह मार्ग पाए, नानक बिन नदरी किछु ना पाई है, जिस नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी दे वडियाई, अपना शब्द वरताए। गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांसी मत उपजे, ना कांसी मत जाए, सतगुर मिले मत उपजे।

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सत

मानस खाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास, तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम परगास, गुजरी महला चौथा, गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सत संगत शब्द मन मोह है, जप गोविंद गोविंद त्याई है, सब को दान दे प्रभ को है, मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है, रहाऊ सुख साग

लगी हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई नाम बिना रस कस दुख खावै मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभ हर हर सरना तिन दरगाह।

गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देवो दान हर प्राण जिवाया। हम हो वह लाले गोले गुरसिखा के, जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया। मेरा मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई। मोको करहो उपदेश हर मिलै मिलाया रहाओ। जां हर प्रभ पावै तां गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। वड भागी गुर के सिख प्यारी, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभ धारी, हरे आपे गुरमुख मिले मलाया।

कथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया होवा वड भागी हर नाम

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सिंह चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करहो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाई सो हम करहे जो आप कराई जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई गुजरी महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे रे मन चितवह उदम जा आहार हर जियो परया सैल पत्थर मह जनते उपाय ता कारजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा भरिया गुजरी महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

आवे। हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगे गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किल विख नासह पितरी होए उदारू। सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाउ। सतगुर तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस का।

नीच कुल ऊचा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ताम है त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछ सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कह वासा ऊहा छोड़ धर्म मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथया लोभ लभी गुर पूरै दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पहाड़ा मिलिया होर सगल पयो बे

करनै हार पछाता, जिसका साथ नहीं रख लिया, सगल जुगत बन आई। कहो नानक प्रभ पुरख दयाला, कीमत कहण ना जाई। गुजरी महला पंजवा, दो पदे कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पवित्र लिए करे अपने, सगल करत नमस्कारु। वर्ण जात को पूछे नाही, बांछ चरण रवारु। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को धनी की जय। जन को अंग नरारु रहाउ, साध संग नानक बुद्ध पाई। हर कीर्तन आधारु, नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु। मुक्त भयो चमियारु, गुजरी महला पंजवा। है नाही को बूजन हारु, जाने कवन पता। शिव बरंच अर सगल मोन जन, गह ना सकाहे गता। प्रभ की अगम अगाध कथा, सुनिए अवर अवर बिद बुझी।

पंजवां मुन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखी परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंदक तिनका बल है थूरा अनक रंग माया के पेखे किस साथ न चाले पूरा ठाकुर तुझ बिन आहे ना मोहरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहे हो तुमरा तुरा रहाओ बल बल बल बल चरण तुम।

केहे उपदेश दृढ़ावे, सहज सहज गुण गाई, साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटह माया बंद, बिसरना कबहू जाई रहाओ, करत करत अनक बहु भांति।

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचह जोत तरी त्याय अपनो सदा हरी सोच अंधेसा।

आई तह भरम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही कहो प्रभ आही नानक टेक पई करते की और आस बढ़ानी लाही गुजरी महला पंजवां कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निस हर भोर।

पंजवा आप जस मिटै हुआ जग कीरत दरगाह बैसन पाई है जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद से ती घर जाइए जाते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा त्याइए रहाउ मोहे सरन दीन दुख भंजन तू देहे सोई प्रभ पाइए चरण कमल नानक रंग राते हर दास है पैज रखाइए गुजरी महला पंजवा विश्वंबर दीन को दाता।

पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया

महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महावीर गरोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण योग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्य आसा कूकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

मित्तर पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्व बिद प्रमते पकार है कतह नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ की दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवा कर चौथा दोपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री सर सफल मूरत करन कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाई गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाऊं कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगी दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परे ओ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केत हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए।

सर्वज्योत निरंजन शंभु छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कतियले सो वैद जे जाने रोगी तिस कारण काम ना तंदा नाही तंदै गिरिह जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले चेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास रसादन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः ना गर्भं बेख ताज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कमन कमन जाचे हैं प्रभदाती ताके अंत ना परह सुमार जैसी भूख होए अभयंतर तू समरत सच देवन हार ऐजी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम देह सुख पाईए तेरी भगत भरे भंडार रहाउ सुन समाद रह निवलागी एका एकी शब्द विचार जल थल धरन गगन।

पार सर्वदृष्ट लोचन अभयंतर एकानदर सोत्रे पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रवदाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाच है प्रभ नायक दें दे तोट नाही पंडार ऊंदे भांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास हुए मन अंतर तैसो जल देव

है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तबे अवर ना मांगो हर पै नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

टकाई, जो तिस भावै सोई करसी, किरत ना मेटिया जाई। ऐ जी भाग परे गुर सरन तुम्हारी, मैं अवरना दूजी पहाई। अब तब एक को एक पकारो,

इतना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

रसना हर रस धारी नानक हर बिन अवर ना मांगो हर रस प्रीत प्यारी गुजरी महला पंजवा घर दूजा

बेकार रख धर्म भरम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ भंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जग

दीस जाप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस है रीत बेत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

नानक हुक्म बुझ परवान होए ता फल पावे सच कतनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल ना बुझेई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया।

आई। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वारा

सतगुर मिलया हो मैं गई जोत रही सब आई इहो जियो सदा मुक्त है सहजी रहया समाई पौड़ी।

भावना वसयो मन आई त्रिक अवेहा जीव्या क्या जुग मह पाया आय माया छोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाय जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वसया मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सो।

आए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मोई कंतना लायो भाओ। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाए कितै ना पाईऐ। हर कर्म बधाता गुर शब्दी, हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए। ऐसनों कूड़ बोल के खवाली है जे चलदिया ना।

ना कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाई विचों आप गवाई कृष्णा भुख विचों उतरे सुख वसै मन आई सदा सदा सलाही है हिरदय लिवलाई सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना तिसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाऊ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल शांत वसै जप हिरदय सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन हर पावह गुणी निदान हर सुख दाता मन वसै हउ मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई तायन दिन लागे ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट वकार गया मन सहजे जिता तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता आनंद नहार के गुण रवे गुण प्रगट किता सबना दाता एक है इको हर मिता सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अन दिन हर लिवलाए

को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम त्याए महला तीजा अंतर कपट मनमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजै नित वेखै सुनै सुभाए दूजै पाए जाए जग प्रबोधै।

नानक गुरमुख मिल रहे जप हरनामा उरतार सलोक महला तीजा गुरमुख ध्यान सहज धुन उपज सच नाम चित लाया गुरमुख अनदिन रह रंग राता हर का नाम मन पाया गुरमुख हर वेख है गुरमुख हर बोल है गुरमुख हर सहज रंग लाया नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त हुए तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया जिसनो कर्म होवे धुर पूरा तिन गुरमुख हर नाम त्याया महला तीजा सतगुरु जिन्ना ना सेवियो शब्द ना लगो प्यार सहजे नाम ना त्याया कि त्याया संसार फिर जूनी पाई है विस्ता सदा खुआर कूड़ै लालच लग्या ना उरवार ना पार नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार पौड़े भगत सच्चा दर सोहदे सच्चा शब्द रहाए हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए हर रंग रह सदा रंग राते रसना हर रस प्याए।

क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना उपर जम का दंड करारा मनमुख जम मग पाईन

पाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विचों जाए। तन मन होवै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए महला तीजा। एहो मन के तड़िया जुग भरमिया, फिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेल उपाय, जां हर बख्शे ता गुर मिलै, अस्थिर रह समाई।

रासक होगी। आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी, जो तिस भाव है सो करे हर करे सो होगी। हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह आप अखाएंदा गुर शब्दी सच सोए, वाह वाह सिफत सलाह है गुरमुख बूझै कोय। वाह वाह बाणी सच है सच मिलावा होए, नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया कर्म प्राप्त होए। महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागिया वाह वाह मुंह कढ़ाई, वाह वाह करह से जन सोहने तिन कौ परजा पूजन आई। वाह वाह कर्म प्राप्त हुए नानक दर सच्चै शोभा पाई। पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभमानी भरम भूले नदर ना आवनी। मन मुखियां दे अज्ञानी उपाय कितै ना लभनी,

त्रिपतानी सलोक महला तीजा वाहो आहो करत्या रैन सुख विहाय वाहो आहो करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए वाहो आहो करत्या हर सिउ निवलाए वाहो आहो करमी बोलै बुलाए वाहो आहो करत्या सुभा पाए नानक वाहो आहो सतर जाए महला तीजा वाहो आहो बाणी सच है गुरमुख लद्दी भाल वाहो आहो शब्दे उच्चरै वाहो आहो हिरदै नाल वाहो आहो करत्या हर पाया सहजे गुरमुख भाल सेवड भागी नानका हर हर हृदय संभाल पौड़ी ए मना अत लोभिया नित लोभे राता माया मनसा मोहनी दह दिस फराता अगै नाउ जात न जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रसना चखे हो फीका बोलाता जिन्ना गुरमुखे अमृत चा

गुरमुखे अमृत पीवना वाह वाह करह लिव लाए नानक वाह वाह करह सी जन निर्मले त्रे पवन सो जी पाए पौड़ी हर कह पाणे गुर मिले सेवा भगत बनीजे हर कह पाणे हर मन वसे सहजे रस पीजे हर कह पाणे सुख पाईए हर लाहा नित लीजे हर कह तख्त बहालीए निज कर सदा वसीजे हर का पाणा तिन्नी मन्या जिन्ना गुरु मलीजे सलोक महला तीजा वाह वाह से जन सदा करह जिनको आपे दे बुझाए वाह वाह करतिया मन निर्मल होवे हम मैं विचो जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करह से जन सोहणे हर तिनकै संग मलाए वाह वाह हिरदै उच्चरा मुखों पी वाह वाह करे नानक वाह।

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उच्चिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काहे। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास।

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाओ परवदगार दा जिसनु करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचार दा अनक रूप खिन माहे कुदरत धार दा जिसनु लाए सच तिसे उधार दा जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हों तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवा काम क्रोध लोभ छोड़ीऐ दीजै अग्न जलाई जीव दया नित जापीऐ नानक साचा नाओ महला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ आप।

अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धार पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर साध जना कै संग भवजल बिकम तर सेव हो सतगुर देव अगे ना मरहो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुभार भार मन को होए संतोख त्याइए सदा हर सो लगा सतगुर सेव जाको कर्म धुर सलोक महला पंजवां लगड़ी सो थान जोड़ नहारै जोड़िया नानक लहरी लक सै आन डुबण दे ना मापिरी महला पंजवां बन पिहाव लै हिक साथी लदम

मित्र असा डड़े से हाँ टुने दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवै साहिब चित तेरिया भगतां डिठियां मन की कटिया मैल साध संग उठियां जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस स्यो लाइन रंग जिस दी सब धारिया ऊची हूं ऊचा खान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याई जां आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है।

आडल हब को पौड़ी तेरे कीते काम तुदैही गोचरे सोई वरतै जग जे किया तुद तुरे विषम पै।

ही ना जाए। गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। श्लोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू कमाव दिया सुख पुंच त्याए दिया तू प्रभु मिल। नानक उतरी चिंत महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग। नानक नाम न ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता हुए ता काहे डरपिए जिस मिल जपिए।

अहंकार सब किस तिसकै वस न कोई बाहरा सो भगता मन बुठा सच सुमाहरा तेरे दास ध्यान तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना जह जह रख है आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरा कै रंग दुरमत धोवना जप जप तुद निरंकार भरम पौ खोवना जो तेरा रंग रत्ती से जून ना जो

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर कत।

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई।

वलवल अवतरै हरी बाई गोविंद नाम मत बीसरै रहाउ अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वलवल अवतरै अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वलवल अवतरै अंत काल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वलवल अवतरै

हम बिसम भई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर भाई ओह सुंदर हर ढोल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाव हों फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुल गोली है सतगुर पुरख मनावो अपना।

अंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार। जो आवत सरन ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक सरन तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन। जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी। हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी। ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकती, ज्यों बेसवा के करपूत जमत है। तिस नाम परयो है तरक्ती रहाओ, जिनकै हृदय नाही हर स्वामी। ते बिगड़ रूप बेरक्ती, ज्यों नुगुरा बहु बातां जाने। ओह हर दरगाह है प्रस्ती, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी। तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत। गुर सतगुर पाते।

0: एक समाइय काटे अव कहत रव्या सब ठाई हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई उस्तत करह सेवक मुन केते तेरा अंत न कतहु पाई सुखदाते दुख भंजन स्वामी जन नानक सद बल जाई देव गंधारी
1: माई होनहार सो होई
0: राच रहियो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई रहाओ कह फूल है आनंद बिखै सोग कब हसनो कब रोई है कब हूं मैल भरे अभमानी कब साधु संग धोई है कोई न मेटै प्रभ का किया दूसर नाही अलोई है कहो नानक तिस गुर बलिहारी जेह प्रसाद सुख सोई है देव गंधारी माई सुनत सोच पै

ज्यों अपने प्रभ भावो नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यों प्रीत कटावो ज्यों अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुबा पावो दासन दास रेण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े।

सेवा दर्शन दुख उतारियो नाम जपत महा सुख पायो चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाव आप मेट पये सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही।

नाम रस माते महा किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

अज्ञान अंधेरा संती काटिया जी दान गुरदैनी कर कृपा कर लीनो अपना जल ते शीतल होनी कर्म धर्म किस उपज ना आयो नह उपजी निर्मल करनी

ही पुरजायो इतनी ना बूझै कब हूँ चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर माने बेग तहा उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी।

हर चरनी लागो जिस प्रभे अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर के शरण स्वामी की अही है कोट पराद महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनासे उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विकनाश है

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहो अनग्रहो स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ तारो देव गंधार।

जाको उपजी, छोड़ ना कतहूं जाता रहाउ। बैखत हर हर सोवत हर हर, हर रस भोजन खाता, अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो, साधु धूरी नाता,

तलाय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल रहाव दुए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए।

काल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अंदेसरा गया रहाउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक धार साज निवाजे मुए दुष्ट जो फया पर उपकारी सर्ब सधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया

जन चरण निस बासुर दर्श पावो तन मन अर्प करू जन सेवा रसना हर गुण गाव सास सास सिमरों प्रभ अपना संत संग नित रहिए एक आधार नाम धन मोरा आनंद नानक एहो लही है।

पाए, छोड न जाए सद ही संगे, अन दिन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना, त्याग न कतहु जाए, अनक अनक भांत बहु पेखे, प्रिय रोम न समसर लाए। मंदर भाग सोभ द्वार, अनहत रुण चुन लाए, कहो नानक सदा रंग माणी, ग्रह प्रिय तीके सद थाए।

छुटकी रे मन छुटकी रे, ताकत संग ना छुटकी रे रहा। जो काजर भर मंदर राख्यो, जो पैसा कालू खीरे, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे, मांगो दान कृपाल कृपा।

अपनीति दुर्मत ते ना तरै रहाउ मद माया कै भयो बावरु हर जस नह उचरै कर पर पंच जगत को डहकै अपनो उधर भरै स्वान पूछ ज्यो होए ना सूदो कहो ना कान धरै कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सरै देव गंधारी महला नवा सब किस जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंधप हर फुन ग्रह की नार रहाव तन ते प्राण हो जब न्यारे तीरत प्रेत पकार आद करी को नह राख घर ते देत निकार मृग तृष्णा ज्यो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक भज राम नाम नित जहां ते होत उधार देव गंधारी महला नौवां जगत मैं

राम। हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़िए, अनत ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। श्री वचुन्ना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मलावै राम। हौ मन देवो तिसे अपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावै राम। नानक भज हर शरनागति मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हौ हर बाज उदीनिया मेरी जिंदड़िए, ज्यों जल बिन कमल उदासे राम। गुरपुरै में लाया मेरी जिंदड़िए, हर सज्जन

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम त्याए राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए ज्यों बालक लग दुध कीरे राम।

माया राम वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए गुरपूरै गत मित पाया राम गुर अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम जन नानक सतगुर जो मिले मेरी जिंदड़िए इनके सब दुख गवाया राम अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवाते राम पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए चहो कुंडी चहो जोग जाते राम हौ मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हर अमृत हर तरनाते राम अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए जन नानक खिन हर राते राम बिहागड़ा महला चौथा हौ बलिहारी

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुनह हर तेरे राम सो सी

तेरा जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन।

तिनकै संग मल उतर मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए तिस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए

सहस सियाणप नह मिले मेरी जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

काल कियो। हर हर नाम अरादे राम, कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो। जम का मार्ग साधे राम, मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख, हर दरगहा सुबा पाईए। जिनको बधातै तुरहु लिखिया, तिन्ना रहन दिन लिव लाईए। हौ मैं ममता मोह छुट्टा, जा संग मिलिया साधे। जन कह नानक मुक्त हुआ, हर हर नाम अरादे। कर जोड़े हो संत इकत्तर होए मेरे लाल जियो।

मेल कंत हमारा लाख उलहने मोहे हर जब लग नह मिले राम मिलन को करूं उपाव किस हमारा नह चले राम चल चित बित अनित प्रिय बिन कमन विधि ना धीजिय खान पान सिंगार बिरते हर कंत बिन क्यों जीजिय आसा प्यासी रैन दिनियर रह ना सकिय एक तिलै नानक पयंपै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले सेज एक प्रियो संग दर्शना पाईए राम अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाईए राम निर्गुण नमाणी अनाथ बिनवै मिलहो प्रभ कृपा ने दे भ्रम भीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नाम ने दे ग्रह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए नानक पयंपै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम इच पुन्नी मन शांत तपत बुझाया राम सफला सो दिनस रैणी सोहावी आनंद मंगल रस घना प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कवन रसना गुण भना भ्रम लोभ मोह विकार थाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयंपै संत जंपै जिन हर हर संजोग मलाया बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अन दिन नाम बखाना राम अमृत बाणी उचरा हर जस

दूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम, पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते, नित देहे चढ़ सो आया, रिद सिद्ध नव निदहर जप, जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक बड़ भाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर जी।

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर एछ पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रहनड़िए प्रिय प्रेम लगा।

जिन हर सारी सब किल विख नास मना कर सदा मजन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साध संगे नाम रंगे तहा पूर्ण आसो मिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विचुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारु बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारु सुन बड़ भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइए पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किश कहन ना जाई राम जिसते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया।

0: तपतमा कतह बुज्ज बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारीय नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम समरथ कारण करना। नानक चातर हर बूंद मांगे जप जीवा हर हर चरना।

गुण गपालना जपह रसना फिर कदहो से देह आवे तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते जम मग गौन अकेली बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिर तो दुहेली तू बलवंच लूक कर है सब जाने जानी राम लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाणे दुख सहो पराणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे किरत घन विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापिया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापिया तुझ बिन को नाही प्रभ राखन हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग हो पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी नानक शरण समर

ज्ञान मैं प्रगट भए तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

शब्द मन भेजी है सदा वसै हर नाल नानक नाम तिना कौ मिले जिन हर वेखै नदर निहाल महला तीजा सिफत खजाना बख्श है जिस बख्शै सो खर्चै खाई सतगुर बिन हाथ ना आवई सब थके कर्म कमाई नानक मनमुख जगत धनहीन है अगै भुखा के खाई पौड़ी सब तेरी तू सब सदा सब तुद उपाया सबना विच तू वरतदा तू सबनी त्याया तिस दी तू भगत थाए पाए जो तुद मन पाया जो हर प्रभ भावै।

सच वसै अज्ञान अंधेरा जाय। सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज। नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी

आखंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता।

सलाहा मंडी पौ मास आहार नानक इहो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत किसकी धार सत संगत स्यों मेलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव संकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बिबाणी आपे नाल गोसत आप उपदेसै आप।

हरस्यो प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुगदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्मे बूझे सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाओ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर भावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

नानक गुरमुख पाई है जां कौ नदर करी पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

अमृत पूजन नाम हर रज रज जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारी पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए जे को मूर्ख आपहु जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनो कृपा करे रजाए महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए किस जोगी की नगरी सब को वसे भेखी जोग ना होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी आपे जंत उपा

जो सह कंठ ना लगियां जलन से बाहड़िया सब सहियां सहुरावन गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तैं सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टियां भरिए मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरों वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

छड़ी गुर कै शब्द मलाय मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मन मुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुर मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरियां बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मन आए परमे भूला फिर संसार मर जन्मे जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

दिन तेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौ क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पिर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पिर गुणवंता हौ औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हौ जाए पुछा अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए हौ सब वेश करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा

फिर रत्ता मेरा अवरा नानक धन धन तन सुहागण जिन फिर रावड़ा सच सवरा हौ जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों फिर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नदर करी फिर साचै मैं छोड़ियाड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करहो हर प्रभ का इत मार्ग भैने मिलिया आप नड़ा प्रभ नदर कर देखै नानक जोत जोती रलिया जो हर

आप वखाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन।

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

इष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

दाते, जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता, नानक साधु देख मन राता, वडहंस महला पंजवां, अंतर जामी सो प्रभ पूरा, दान दे साधु की तूरा, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ, जाल काल महियल रहे आपर पूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे, जिसनो नदर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए, जी जंत सगले प्रत पारे, सरन परे हो नानक हर द्वारे, वडहंस महला पंजवां, तू वड दाता अंतर जामी, सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा, हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, चरण कमल हृदय उरतारे,

तार संभाली, मैं निर्गुण कौ रख लेता। हों पई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पेर कितै ना लेखा। इहो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण, सब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे, किश पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिलिया, कर्म होवा तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे, वडहंस महला पहला, करहो दया तेरा नाम बखाना, सब उपाय आप आपे सर्ब समाना, सर्बे समाना आप तू है, उपाय तंदे लाइया, एक तुझ ही किए राजे, किकना भिख पवाइया, लोभ मोह तुझ पिया मीठा, एत भरम भलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा, सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समान, गावन सुर नर सुगड़ सुजान, सुर नर सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन भावहि, माया मोहे चेतह नाही, अहला जन्म गवावहि, एक मूड़।

राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे आपर पूरे राम फिर रव रहे आपर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर भावै।

ब्राह्मण वडभागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुपाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिंगार बनाया हों मैं मार मुइये तू चल गुर कै पाई हर वर रावह सदा मुइये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहाग नारी फिर रलियाला जोबन बाला अन दिन कंत सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चा शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडहंस महला तीजा गुरमुख सब वापार भला जे सहजे की जय राम अन दिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पी जय राम लाहा हर रस लीजै हर रा बीजै।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम त्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावे मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझिया हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौ निध पाई।

खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

रसना हर रस पीजै राम, रसना हर रस पीजै अंतर पीजै, साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पीयै पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रबीजै, नानक नाम रते से निर्मल, होर हूं मैं मैल परिजै, पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई ना मेटन आरा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूरख कूक मुए गावारा, माया मोहे मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम, गुरमुख इहो मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच भरे पंडा।

सकै कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखै, तिस जेवड़ अवर ना कोई। मनमुख अंधा तप तप खपै, बिन शब्दै शांत ना आई। नानक बिन नावै सब कोई भुला, माया मोहे खोआई। एहो जग जलता देख कै, भज पय हर सरनाई। राम अरदास करी गुर पूरे आगै,

सेवा लागे सेवड भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावै बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजै होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देहे बुझाई राम आपे देहे बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया कर्म है निज कर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर।

पाई सुख सतगुर देव मन परसते हौ जीवा सतगुर देख सरसे कोई आण मलावे मेरा सतगुर पूरा राम हौ मन तन देवा तिस काट शरीरा राम हौ मन तन काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाते देहो सतगुर चरण हम तू।

देव हर पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख भरम पौ भागा सेवक भाई मिले वडभागी जिन गुर चरनी मन लागा कहो नानक हर आप मलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई बड़हंस महला चौथा हौ गुरबिन खरी निमाणी राम जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया जिस कारण हों ढूंढ टुनेंदी सो सज्जन हर घर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हौ गुरबिन खरी निमाणी जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया

किनके जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी शरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी शरदा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे शरदा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेलै करै सो होई राम जो हर प्रभ भावै सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियानप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया

0: मेरा अंत सखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया,
1: जिते पुत कलत्र कोई बेली नाही,
0: तिथे हर हर नाम छड़ाया, तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम ते आई, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर बिन रहन ना जाई, जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम, तिन निफल जन्म सब बिरथा गवाया राम, निफल जन्म तिन बिरथा गवाया,
1: ते साकत मुए मर चूरे,
0: कर हुंदै रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे, हर हर तिनका

दर्शन सतगुर पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा धारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाई लगे हैं नित करहे बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम जप हर हर नाम लथे अड़े जग तापा राम हर हर नाम जिन्नी अरादया तिनके दुख पाप नवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाथे पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनदिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया इन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देह तेजन जी राम उपाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देह सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एह देह सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी बिखम भोए अंगा राम बिखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ बड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकड़ो कड़ावे शब्द पावे अपेओ हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा
जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम अपाइया राम। जित हर प्रभ जापै सा धन तन दुखाइया राम। जित हर प्रभ जापै सा धन सब आसै तुर पाया किरत जुड़ंदा। चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा। हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जानी आई। जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई। बड़हंस महला चौथा देह तेज नड़ी हर नवरंगिया राम। गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम। ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गतमित जानिया। सब जन्म सफलो किया करतै हर राम नाम बखानिया। हर राम नाम सलाहे हर प्रभ हर भगत हर जन मंगी।

हर मिले हर गुण सुख घणी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बड़भागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाण नाम जान, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुपहाय, हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी, देह घोड़ी चढ़ हर पाया, राग वडहंस महला पंजवा, शंत घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरमिल लद्दा जी राम प्यारा राम, एहो तन मन दितड़ा वारो वारा राम, तन मन दिता पवजल जिता, चूकी कान जमाणी, अस्थर थिया अमृत पिया, रहया आवन जानी, सो कर लद्दा सहज समदा, हर का नाम अधारा, कहो ना

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरण आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर तिनका लेखा ना गणया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बेअन।

ने से परधाने हर से तीरंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मन मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भय दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींडे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल

जिन जग तंदे लाया मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा घत चलाया जानी घत चलाया लिखया आया रुन्ने वीर सबाई

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वड़ांस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवे है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उथे जाना, जिसका किया तिन्हीं लिया, हुआ तिसे का पाणा, जो तिन कर

जे कोई मर जाने मरन मुनता सूरिया हक है जो होए मरन परवान सूरे से आगे आखिय है दरगाह पावे है साची मान दरगाह मान पावे है पत स्यों जावे है आगे दुख ना लागे कर एक त्यावे है।

ना जाए। गुरमुख जाता शब्द पछाता साचै प्रेम समाय। जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ आरे। सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे। सब जागे आप

जन्म गवायो रोवे अवगुण यारी झूठी। फिर जग जीवन किसनो रोइया रोवे कंत वसारे सब जग आप उपायो आवन जान संसारी। सो फिर सच्चा सद ही साचा है ना ओह मरे ना जाए भूली फिरे धन इणिया रंड बैठी दूजे पहाए रंड बैठी दूजे पाए माया मोहे दुख पाए। आप कटे तन सीजे जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजे जम काल ना सूजे माया जग लूजे लभ लोभ चेत लाए। सो फिर

फिर नाले गुर प्रसादी साचा फिर मिले अंतर सदा संभाले फिर अंतर संभाले सदा है नाले मन मुख जाता दूरे इहो तन रुलै रलाया काम ना आया जिन खसम ना जाता हदूरे नानक सा धन मिले मलाई तेरे अंतर सदा संभाले फिकरो वह पिरह विछुनिया।

प्यारी मैं प्रभ सच पछाणिया होर भूली अवगणयारी मैं सदा रावे फिरे अपना सचड़ै शब्द विचारी सच्चै शब्द विचारी रंग राती नारी मिल सतगुर प्रीतम पाया अंतर रंग राती सहजे माती गया दुश्मन दुख सबाया अपने गुर कौ तन मन दीजै ता मन भीजै कृष्णा दुख नवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगणयारे सचड़ै आप जगते अपाया गुर बिन घोर अंधारू

कौड़ी, तू आपे ही आप है, आप कारण किया, तू आपे आप निरंकार है, को अवर ना बिया।

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे है हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कार्ज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्ने सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ै सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीतमै जिन हऊ मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेसया।

मिलन बड़े आईया दरगाह मुख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनन सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाही प्यार सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सतियार नानक सतगुरु की सेवा सो करे जिसनो नदर करे करतार महला तीजा होर वडाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिग वास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख रास बिख खाना बिख पहनना

ना होवे अचिंत वत्सै मन आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल होवा अमृत सारे तीर्थ नहाय सज्जन मिले सज्जना सच्चै शब्द सुपहाय घर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाय पाखंड जम काल ना छोड़े लै जासी पत गवाय नानक नाम रते से उबरे सच्चे सिउं लिबलाए पौड़ी तित जाए बहु सत संगति जितै हर का हर नाम बिलोइयै सहजे ही हर नाम लेहो हर तत ना खोइयै नित जप्यो हो हर हर दिन सरात हर दरगाह ढोइयै सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लखोइयै तिस गुर को सब नमस्कार करहु जिन हर की हर गाल गलोइयै श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना

मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुरु दाता सेवी है शब्द वसे मन आए मन तन शीतल शांत होए तृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे जे सच रह लिवलाए चिंता मूल ना होवे हर नाम रज्जा आगहाए नानक नाम बिना नह छूटिए हों मैं पचह पचाए पौड़ी जिनी हर हर नाम ते आया तिनी पायड़े सर्व सुखा सब जन्म तिन्ना का सफल है जिन हर के नाम की मन लागी भुखा जिनी गुर कै बचन आराध्या तिन विसर गए सब दुखा ते संत भले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा धन तन तिना का गुरु है जिस अमृत फल हर लागे मुखा श्लोक महला तीजा कल मह जम जंदार है हुक्मे कार कमाए गुर राखे से उभरे मन मुखा दे सजाए जम काले वस जग बांधिया तिसदा फरू ना कोई जिन जम कीता सो सेवी है गुरमुख दुख ना होए नानक गुरमुख जम सेवा करे जिन मन सच्चा होए महला तीजा एहा काया रोग भरी बिन शब्द दुख हों मैं रोग ना जाए सतगुर मिले ता निर्मल होवे हर नामो मन वसाए नानक नाम त्याया सुख दाता दुख विसरिया सहज सुभाए पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसिया तिस गुर को हों सदा कुमाया तिस गुर को हों खनी है जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया तिस गुर को हों वारन जिन हों मैं बिख सब रूप गुआया तिस सतगुर को वड पुन है जिन अवगण कट गुणी समझाया सो सतगुर तिनको भेटिया जिनकै मुख मस्तक भाग लिख पाया सलोक महला तीजा भगत कर है मर जीवड़े गुरमुख भगत सदा होए उन्ना को तुर भगत खजाना बख्शिया मेट ना सकै कोई गुण निधान मन पाया एको सच्चा सोए नानक गुरमुख मिल रहे फिर विछोड़ा कदे ना होए।

है सच सिरजन हारी, जिस तू मिल है प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारी। हौ बलिहारी सतगुर अपने, जिन मेरा हर अलख लखारी। श्लोक महला तीजा, रत्ना पारख जो होए सो रत्ना करे विचार। रत्ना सार ना जानी अज्ञानी अंध अंधार। रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझन हार। मूर्ख आप गणाई दे मर जम है होए खुआर। नानक रत्ना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार। सदा सदा नाम उच्चर हर नामो नित व्यवहार।

तिन्नी सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायर रूप है बिन नावै लक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख हो है ता उबर है नाही ता बदे दुख सहाय। महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे अंतर शांत सदा सुख दर सच्चै सोभा पाए। नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई। बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उस नो सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल ना हो वही हूं मैं शब्द जलाए। कूड़ै की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए। नानक पूरे कर

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास।

और पूर्व लिखे आस पौड़ी हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई हर नाम हमारा वणज।

पौड़ी, जिन उपाए जी तिन हर राखिया, अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया, तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया, सब अंदर एक वरतै तिन विरलै लाखिया, जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया।

हो गई। जिचर शब्द ना करे विचार, हम मैं मैल ना चुकई, नाम ना लगे प्यार। इक आपे बख्श मलायन, दुबदा ताज विकार। नानक एक दर्शन देख मर मिले, सतगुर हेत प्यार। महला तीजा, सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार।

0: मन हर सरनी पड़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया खिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहाओ जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवे मरे बिख खाई गंदन वहन रत्ता हित कारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा में सहज ना चाखिया

कन्नी सुन सुन शब्द सलाही, अमृत हृदय वसाई, निर्भउ निरंकार निर्वैर, पूर्ण ज्योत समाई। नानक गुरविण भरम ना भागै, सच नाम वडियाई। सोठ महला पहला दुतुके, पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंट चौबारा, सगल भवन की।

इकत रूप फिर परछन्न कोय ना किस ही जेहा अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे कीते जनता एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना माहे रवंता तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै सोठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख परम रस राते ठाकुर शरण तुम्हारी करता तू मैं मान निमाणी मान महत नाम धन पल्ले साचै शब्द समाने रहाओ तू पूरा हम पूरे होशे तू गौरा हम हौरे तुझ ही मन राते अहनस प्रभाते हर रसना जप मान रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे अहनस नाम रते से सूचे मर जन्मे से काचे अवर ना दीसै किस सालाही तिसह शरीक ना कोई प्रणवत नानक दासन दासा गुरमत जानिया सोई सोठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर ना तिस काल ना कर्मा जात अजात अजोनी संपहो ना तिस भाओ ना भरमा साचे सचियार विटोह कुरबान ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया साचै शब्द नीशान रहाओ ना तिस मात पिता सुत बंदक ना तिस काम ना नारी अकुल निरंजन अपर परंपर सगली जोत तुम्हारी घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया घट घट जोत सबाई वज्र कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाए काल सिर जंता वसगत जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पावह छूटह शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै विरले सूचाचारी तंतै को परम तंत मलाया।

बिहारी जियो सतगुर बंधन तोड़ नरारे बहुड़ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सूरत महला पहला जिस जल निध कारण तुम जागे आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ो वेश भेख चतराई।

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपियो परम सुख पाई है निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाई है।

इस देही अंदर पांच चोर वस्से है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूट है मनमुख नहीं बूझ है।

कर कर विगुटे केहो चल्लै ना चल दिया नाल गुरमुख होवै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुर ज्ञान सदा घट चान अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती।

आप राख जो तेरे मन पानी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा निभ तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हरनाक्ष नख है बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी आपस कहो

नाहीं, अंत गए पछताई। सफल जन्म भगतां का कीता, गुर सेवा आप लाए। शब्दे राते सहजे माते, अन दिन हर गुण गाए। नानक दास कह बेनंती, हौ लागा तिन कै पाए। सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई। जे गुर के पाणी विच आवे, अपने पाणे जो चले पाई। विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई। फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई। जन्म जन्म के किल विख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ। यो कटंब सब जी के बंधन पाई। परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही। गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है गुर शब्द ना पछाण है। मर जन्म है वारू वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई। कोई ना किस ही केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन। निज घर होए बसेरा, ऐथे बूझे सो आप पछाणे। हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई। बिन भागा क्या पाईए, एक नदर कर वेखे सब ऊपर। जेहा भाव तेहा फल पाईए, नानक नाम वसै मन अंतर। विचों आप गवाई है, सोठ महला तीजा चौथुके। सच्ची भगत

सरनाई। अपनी नदर करे पत राखै, हर नामो दे वडियाई रहाओ। पूरे गुरते आप पछाता, शब्द सच्चै विचारा। हिरदय जग जीवन सद वस्या, तज काम क्रोध अहंकारा। सदा हजूर रविया सब ठाई, हिरदय नाम अपारा। जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाउ मीठा मनह प्यारा। सतगुर सेव जिन नाम पछाता, सफल जन्म जग आया। हर रस चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावै गुणी अगाया। कमल प्रगास सदा रंग राता, अनहद शब्द बजाया। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच्चे सच समाया। राम नाम की गत कोए ना बूझै, गुरमत हृदय समाई। गुरमुख होवै सो मग पजाणै, हर रस रसन रसाई। जप तप संयम सब गुरते होवै, हृदय नाम वसाई। नानक नाम समल है से जन सोहन, दर साचै पत पाई। सोठ महला तीजा दुतुके, सतगुर मिलै उल्टी पई पाई। जीवत मरै तां बूझ पाई, सो गुरु सो सिख है पाई। जिस ज्योति ज्योत मलाई, मन रे हर हर सेती लिव लाए। मन हर जप मीठा लागै पाई, गुरमुख पाए हर थाए रहाउ। बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए। तोह कुटहै मनमुख कर्म करहै पाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार। आया सो परवान है पाई, ये गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाईए पाई, गुर शब्दी मेलाए। सोठ महला तीजा घर पहला, तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामे ते सब उपजे पाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे पाई, भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हिरदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे पाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाई, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए। सतगुर सेव है ता सुख पावे, नाही ता जाहेगा जन्म गवाई रहाउ। त्रै गुण धात बहु कर्म कमावे, हर रस साध ना आया। संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई। हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखै, घरै अंदर सच पाए। सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते।

दुबदा सहज सुमाणी पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल हुआ गिल बिख काटन हारा शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है से सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या।

राम नाम सुख होई, त्रै गुण सब तेरे, तू आपे करता, जो तू करह सो होई, नानक राम नाम निस्तारा, शब्दे हम मैं खोई, सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाह, वणजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहू, आपे वणज व पारिया।

अमृत अगम अथाह रहाउ। आपे सुन सब वेखदा प्यारा, मुख भोले आप मुहाउ।

प्यारा गुर खेवट आप चला आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखे पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए

कर दया अमृत मुख चोए रहाव। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सब नारिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

आपे अलख ना लखिए प्यारा, आप लखावे सोई, आपे गहर गंभीर है प्यारा, तिस जेवड़ अवर ना कोई, सब घट आपे भोगवे प्यारा, विच नारी पुरख सब सोई, नानक गुप्त वरतदा प्यारा, गुरमुख प्रगट होए, सोठ महला चौथा, आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चूज वेख प्रभ आपे, आपे वण तिण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस त्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे रहाओ, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरह प्रभ आपे, आपे जाल बताए दा प्यारा, सब जग मछली हर आपे,

आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपुरै मीठा लाया रहाउ आपे धरती आप।

आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत संगत मिल त्याए तू हर हर बहुड़ ना आवन जान रहाओ आपे ही गुण वरतदा प्यारा आपे ही परवान आपे बख्श कराईंदा प्यारा आपे सच निशान आपे हुक्म वरतदा प्यारा आपे ही फुरमान आपे भगत भंडार है।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा जो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सतसंग भये साधु जन हिरदय मिलिया शांत मरारी रहाओ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुरु पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर सिंह प्रीत अंतर मन भेदिया।

कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया भाए सुभाई

हर रस अंतर पाए, नानक दीन दयाल भये है, कृष्णा शब्द बुझाए, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटे आ जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़े आई।

नाही, जे को रखै लुकाई, सब किस तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करह सो पाई, जन नानक अवर ना कोई, ठोठ महला पंजवा घर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किस हौं जाती किस आरादी, जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी, निरपहो निरंकार भव खंडन, सब सुख नव निध देसी, हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपड़ा क्या सलाई, क्या तिसका मोहताजा रहा, जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाता, नखोटना कब ही जाई, आनंद भया सुख सहज समाणी।

आद शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाउ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हृदय त्याईए सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया।

पंजवां कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावहो सुनहो पढ़हो नित भाई गुरपूरै तू राख्या रहाउ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो सर्ब वेला मुख पावो हो जरा मरा ताप सब नाठा

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौथ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

करै सो भला मनाइयै सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयो दर्शन हर जियो पाइयै भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कहो गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दाता रे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे

दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटा पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपनी मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराती तरियारी गुर नानक जिन सुनिया पेखिया जे फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंधिसरु ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेह ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया चौथ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जेह जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को इही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूर सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते।

हम भलो ना जाने। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे कहो नानक हम इह हवाला।

मांगन कौ सगली दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सूरठ महला पंजवां हम संतन की रेन प्यारी।

बन आई पूर्व लिखिया पाई एहो मन तेरा पाई रहाउ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों बेवहारा संतन स्यों हमलाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भये सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

मन तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भाने अंतर बिद जाने, ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी पार

पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारी महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारी पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया तां की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवां करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह मान।

सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल बिनासी कर कृपा अपनो कर लीना, मन वसिया अबनासी तां को बिघन ना को लागै, जो सतगुर अपने राखे चरण कमल बसे हृदय अंतर, अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ता कै बलिहारै, जिन पूर्ण पैज रखाई सूरत महला पंजवा, माया मोह मगन अंधियारै देव नहार ना जानै, जियो पिंड साज जिन रचिया बाले अपनो कर मानै, मन मूड़े देख रहो प्रभ स्वामी जो किछ करहै सोई सोई जानै, रह न कछुऐ शानी रहाउ जिहवा स्वाद लोभ मद मातु, उपजे अनक बेकारा बहुत जोन भरमत दुख पाया।

मांगे तब कौन पड़ता तेरा ताके। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट ना काई। काड ले हो संसार सागर बह नानक प्रभ सरनाई।

थीवे बिघ्न बनासन सब दुख नासन गुरचरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हो मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहे आसमाहेउ पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थल रमैया आहो रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे आसमायु सूरठ महला पंजवा जां कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुकी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल त्रे पवन रुखी सोठ महला पंजवा काम क्रोध लो

औखद मुख देव काटे जम की फंदा रहाउ। सम्राट पुरख पूर्ण बेधाते आपे करने हारा, अपना दास हर आप उभारिया। नानक नाम अधारा,

काट सिलक कीनो अपनो दासरो तव नानक कहा निहोरो चोट महला पंजवा पये कृपाल गुरु गोविंदा सगल मनोरथ पाए अस्थिर पये लाग हर चरणी गोविंद के गुण गाए फलो समूरत पूरा शांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ मिले स्वामी प्रीतम अपने करमंदर सुखदाई हर नाम निदान नानक जन पाया सगली इच्छ पुजाई सोरठ महला पंजवा गुर के चरण बसे रिद भीतर शुभ लखन प्रभ कीने।

ताप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बिधाता रहाउ, नंद बिनोद मंगल गुण गावहु, गुर नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।